सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 27 मई 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी

0: क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: जगत का मिथ्या तत्व यही है कि वो प्रतिक्षण परिणामी है, सत होते हुए भी विनाशी और क्षण भंगुर है। ये शरीर पत्ता है, ये पत्ता किस समय मुरझा जाएगा कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार शरीर किस समय क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वृक्ष हमें छाया और फल देता है, साथ ही उससे लकड़ियां निकालकर उपयोग में लाई जाती हैं। माया से भी जगत का नाना वस्तु समुदाय निर्मित होता है और यही जीवों को भोग रूपी फलों को परमेश्वर के नियंत्रण में रहकर उत्पन्न करती है। विषय वासना के भांति भांति के फल इसी में लगते हैं। वृक्ष बीज रूप में अपनी सत्ता को स्थित रखता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसी के भीतर आत्मा रूपी महाधन निहित है। वो इसे लेकर गतिमान है, इसके साथ काम क्रोध मद लोभ मोह ये 5 चोर उस महाधन को चुराने के लिए साथ चल रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां इस शरीर रूपी कारवां की स्थिति को विकृत करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मन को आकर्षणों से हटाने से, प्रभु भक्ति में शरीर की चिंता ना करने से भगवत प्राप्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। जीवात्मा उसी परमात्मा का अंश है, इसके भीतर किसी प्रकार की सांसारिकता का उदय होने पर भी उस अंशी में किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं हो सकती। जिस तरह जल में दूसरा पानी मिलने पर विकार नहीं आता, आत्मा सर्वव्यापी है, सब में है, जगत और ब्रह्म का संबंध अपरिहार्य है। जगत माया के ब्रह्मजाल में फंस रहा है क्योंकि सद्विवेक के अभाव में जड़ जगत का ऐसा प्रवर्तन सहज है। मनुष्य जब तक जीवित रहता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके लिए वो संसार को धोखा देने में भी कोई कसर नहीं रखता। इतने सब कुछ के बाद भी प्राण इस नश्वर शरीर को छोड़ जाते हैं। इस माया विषयक मिथ्या दृष्टिकोण के परिहार हेतु ज्ञान की उदात्त विशाल और प्रखर धारा का प्रभावित होना आवश्यक है। सत्य के पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर लेने पर चेतना पूर्ण आनंद देने वाली हो जाती है। अखंड आनंद के इस आकर्षण को मुक्त जीव की चेतना फिर कभी नहीं छोड़ती। ज्ञान का नाम विद्या और कर्म का नाम अविद्या है। ज्ञान से भिन्न कर्म है, इन दोनों का उपयोग साथ साथ करना है। इन्हें हम विज्ञान और कला भी कह सकते हैं। केवल ज्ञान और कर्म का कोई फल नहीं है, फल तो ज्ञान पूर्वक कर्म है। कर्तव्य परायण होकर मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। अमरता पाने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना होगा, समष्टि में अपने को मिटाना होगा। अमरता तो अध्यात्म ज्ञान से प्राप्त हो सकती है और वही वास्तव में विद्या है।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जीवन के सत्य के संबंध में विचार, वाचक स्वर था रजनीश गुप्ता का। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं ये मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए सभी देवताओं में अग्रगण्य मंगलकारी और मन वांछित फल देने वाले सिद्धि विनायक भगवान गणपति की वंदना करते हैं। सुनते हैं उषा मंगेशकर और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे प्रीति सागर का गाया ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। काहे को जपो ये जप, काहे को तपो ये तप, काहे को प्रपंच पंच पावक में दहिए, रैन दिन आठो जाम, राम राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। रे मन, भगवान श्री राम के नाम में ही सच्चा आनंद है।

इस शब्द के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हो रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान का संगीत बद पाठ।

काक भुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत बद पाठ। कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 9:15 पर स्पोर्ट लाइट और रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर कॉमन सिटीजन्स समृद्धि बिष्ट की अंग्रेजी वार्ता प्रसारित की जाएगी रात्रि 8:00। सुबह 9:45 पर कार्यक्रम सेहत के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर संध्या देवड़ा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय रहेगा मासिक धर्म स्वच्छता और महिलाओं का स्वास्थ्य। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा जनानों का वास्ता। युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे श्रीमती इंदु भारती निवानी की वार्ता। विषय रहेगा पुस्तकालय से डिजिटल पुस्तकालय तक। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:00। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा रघुनाथ बालकृष्ण सोलापुरकर का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मोहन सिंह बोरा और साथियों से कुमाऊनी लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत आप सुन पाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा विविध कलाकारों से नाद। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं विविध कलाकारों के गाए भजन। फिल्मी देशभक्ति गीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:10 पर। श्रोता अपनी पसंद की फिल्मी गीत सुन सकते हैं व्हाट्सएप फरमाइश के अंतर्गत दिन में 11:00। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे।

0: सुबह 9 बजे सदाबहार कार्यक्रम में 10:12 पर, दिन में 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, 3:02 पर, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर, रात को ही 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: पूर्व आईपीएस अधिकारी बालम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल दृढ़विश्वास प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच

0: ये आवाज़ थी मन्ना डे की, फिल्म का नाम था काबुली वाला।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला देशभक्ति गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी बलबीर और साथियों की, फिल्म का नाम नया दौर। गीत है साहिल उद्यानवी का और संगीत ओपी नैयर का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी देशभक्ति गीत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। राज्य में टेक होम राशन का वितरण अब चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। IRCTC अगले महीने ऋषिकेश से 2 भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन करेगा। श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में हरित हरिद्वार अभियान को जन समर्थन मिल रहा है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने यह घोषणा की।
2: और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: राज्य में टेक होम राशन का 100% वितरण चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। देहरादून में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इससे पात्र लाभार्थियों तक राशन का सही तरीके से वितरण हो सकेगा और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चेहरा आधारित प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन नैनीताल में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फिनबोध एवं उत्तरवाणी ऐप और असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर पाठ्य सामग्री का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने इन पहलों को उत्तराखंड की आर्थिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षमता को सशक्त बनाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने कहा कि फिनबोध ऐप वित्तीय साक्षरता को सरल और व्यावहारिक रूप से आम जन तक पहुंचाने का अभिनव माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के लिए निवेश, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, कर नियोजन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की जानकारी आवश्यक हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐप आधारित माध्यमों से युवा तेजी से सीखते हैं और यह पहल वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने उत्तरावाणी ऐप को उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने निजी कंपनी के सहयोग से उत्तराखंड इंडस्ट्री अकादमिक कॉन्क्लेव ऑन हाइड्रोजन का आयोजन किया। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, शोधकर्ताओं और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के भविष्य पर मंथन किया। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता उत्तराखंड हाइड्रोजन वैली की अवधारणा रही, जिसमें IIT रुड़की को केंद्रीय ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस मॉडल के तहत उद्योगों, सरकारी एजेंसियों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को जोड़कर उत्पादन, भंडारण, परिवहन और औद्योगिक उपयोग सहित संपूर्ण हाइड्रोजन वैल्यू चेन विकसित करने की योजना बनाई गई। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत अग्निवीर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की ऑनलाइन परीक्षाएं जून 2026 में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम दिशा निर्देश, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समय समय पर भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC अगले महीने ऋषिकेश स्टेशन से दो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन करेगा। पहली ट्रेन 12 से 23 जून तक 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगी, जबकि 29 जून से 10 जुलाई तक चलने वाली दूसरी ट्रेन दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। यात्री अपनी सुविधा अनुसार योगनगरी ऋषिकेश व हरिद्वार सहित कई स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 12 जून को योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर व घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। 11 रात और 12 दिनों के इस टूर के लिए IRTC ने 24,100 रूपये प्रति व्यक्ति पैकेज तय किया है। पैकेज में स्लीपर क्लास का कंफर्म टिकट, खाना व ठहरने की सुविधा शामिल है। थर्ड एसी के लिए 40,890 व सेकेंड एसी के लिए 54,390 का भुगतान करना होगा। खास बात यह है कि EMI के जरिए भी पैकेज लिया जा सकता है। वहीं 29 जून से 10 जुलाई तक संचालित होने वाली दूसरी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर, मदुरे, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
1: कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए शुरू किए जा रहे हरित हरिद्वार अभियान को सामाजिक संगठनों और आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। प्रशासन की ओर से प्रस्तावित इस विशेष वृक्षारोपण अभियान को लेकर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठन में उत्साह देखा जा रहा है। अभियान की तैयारियों को लेकर मेला नियंत्रण भवन में मुख्य विकास अधिकारी और अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अभियान में सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में आगामी मानसून सत्र के दौरान बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण और देखभाल को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कहा कि वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा और लोगों को इससे व्यक्तिगत रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ईद उल अजहा के दौरान राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में ईद उल अजहा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने पूरे जिले को 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर में विभाजित किया है। पुलिस, PSC और खुफिया एजेंसियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जबकि सोशल मीडिया की भी निगरानी रखी जा रही है। बहादुराबाद मस्जिद के मुफ्ती शाहरुख मिसबाही ने मुस्लिम समाज से जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है।
3: ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा भी बड़ा त्यौहार है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना जरूरी समझूंगा कि मना करदा जानवरों की कुर्बानी हरगिज ना करें।
1: उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक लेते हुए उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ताकि वास्तविक और पात्र किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कीवी एक उच्च मूल्य वाली नकदी फसल है और जिले में कीवी उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्थानीय किसान इसका लाभ उठाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर सकें। श्री आर्य ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल बड़े काश्तकारों तक ही सीमित न रहे, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी कीवी मिशन से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। राज्य में टेक होम राशन का वितरण अब चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। IRCTC अगले महीने ऋषिकेश से दो भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन करेगा। श्रद्धालु ज्योतिर्लिंगों और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के कर सकेंगे दर्शन। और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में हरित हरिद्वार अभियान को जन समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: सौ 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। डीजे कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए कुमावनी लोकगीत। कलाकार हैं मोहन सिंह बोरा और साथी।

ऐसा ये खेलिहानी ताशा बिदरा का शुरू करा राजा चिला राम बना बाशा।

नारी व्याकुल भई सारे अयोध्या का, बुझानी भगा चिणनी न घरा। सुन माता के कही तिले राम का वनवास दिवास, तिल लगाओ करा।

कल्याणी ताशा राम लक्ष्मण सीता सहिता बुझ गई खेवट जी पाशा। सिनिया पनारा कन कम श्यारा मेला जाड़ू भोला खेवटा।

0: रहा।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत आप इस समय सुन रहे हैं मोहन सिंह बोरा और साथियों से कुमाऊनी लोकगीत।

0: आज की इस वार्ता में।
1: डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड गिव अप ऑन योर ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग उत्तराखंड हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी। अवेल 25% डोमिसाइल स्कॉलरशिप एंड ज्वाइन UPES। एप्लीकेशंस क्लोज 30th मई। टू स्टार्ट योर UPES जर्नी अप्लाई नाउ एट upes.ac.in।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

0: मोहन सिंह बोरा और साथियों के गायस कुमावनी लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पैनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
7: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
8: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
4: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक आर्डर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
9: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में CNG के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
4: और और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 52 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
12: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
12: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
11: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950 and the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories. The poll body had initially identified 11 documents for verification purposes. However, the apex court later directed the inclusion of Aadhaar as an additional document for the SIR process. Most of the petitions were filed in June last year after the ECI decided to conduct an SIR in Bihar. The exercise was subsequently extended to multiple states and UTs, including West Bengal, Kerala and Tamil Nadu. The poll body defended the exercise before the apex court, contending that the revision was aimed at ensuring the purity

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, आज देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और माता स्वरूप रानी नेहरू एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। नेहरू ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वहां से भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। लेकिन उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था और पंडित नेहरू महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और ये कई बार जेल भी गए। वे चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और आधुनिक राष्ट्र बनना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिनमें बड़े बड़े बांध, इस्पात कारखाने, वैज्ञानिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। उनका मानना था कि विज्ञान और तरक्की से ही राष्ट्र की प्रगति हो सकती है और यही कारण है कि उन्होंने IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थान को बढ़ावा दिया। पंडित नेहरू हमेशा शांति, सहयोग और विकास को पक्षधर थे और यही कारण है कि हमेशा उन्होंने विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। पंडित नेहरू बच्चों से विशेष प्रेम करते थे, यही कारण है कि बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। पंडित नेहरू का मानना था कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। पंडित नेहरू कुशल लेखक भी थे और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पासेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी आदि। पर श्रोताओं, आज के दिन 27 मई 1964 को पंडित नेहरू ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनके आदर्शों, विचारों और देश के प्रति योगदान को आज भी याद किया जाता है। आकाशवाणी देहरादून की ओर से श्रद्धांजलि।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान महिला

0: शक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन, साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। और आइए श्रोता बढ़ते हैं और जानते हैं अखबार की सुर्खियां। हिमालय के बेटे शिखर पर एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, पहाड़ की प्यास और आग दोनों बुझाएंगी पेयजल लाइनें, वनों की आग से बचाने वालों को मिलेगा पुरस्कार। उत्तराखंड में शुरू हुई हाथियों की प्रत्यक्ष गणना, अब तय शुल्क देकर खिलाड़ी ले सकेंगे विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ। 1 जून तक देनी होगी पेंशन धारकों को सत्यापन रिपोर्ट। फिनबोध उत्तरावाणी होम स्टे मैनेजर पाठ्यक्रम का लोकार्पण। प्रदेश में तैयार होगी ANPR कैमरों की एकीकृत कार्य योजना। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा नीति की बैठक। चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ा दबाव, श्रीनगर में रोके गए यात्री वाहन। स्थानीय उत्पाद को जिला निर्यात हब देगा अंतर्राष्ट्रीय पहचान। खेतों की खीरबाड़ के लिए अब होगा गांव का चयन। ईद उल अजहा अब कल सार्वजनिक अवकाश। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 15 जुलाई तक आवेदन। गर्मी से अभी राहत नहीं, कुछ दिन और सताएगी तपेश। और अब जानते हैं मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा या गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। श्रोतों ये थी मौसम संबंधी जानकारी। अब नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर कि आज 27 में क्यों है खास। इतिहास के पन्नों में वर्ष 1703 में रूस के शासक पीटर महान ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना की थी। 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट इटली के सम्राट बने थे। 1896 में जार निकोलसन द्वितीय रूस के अंतिम सम्राट बने। 1930 में प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक रिचर्ड ड्रू ने स्कोच टेप का आविष्कार किया। सन 1937 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट नामक दुनिया के सबसे खूबसूरत पुल का उद्घाटन हुआ। आज ही के दिन 1951 में मुंबई में तारापोर वाला एक्वेरियम का उद्घाटन हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत हुई थी। 1962 में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1907 में प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षाविद कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। 2008 में ऑस्कर विजेता निर्देशक सिडनी पोलक का निधन हुआ था। और वर्ष 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जापान के हिरोशिमा पहुंचने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं ये थी इतिहास की पन्नों से जानकारी। और आइए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता। श्रोता, स्वस्थ जीवन के लिए हमारी पहली आवश्यकता है स्वच्छ रहना। स्वच्छ रहने या स्वच्छ करने से हम और हमारे आसपास की गंदगी दूर हो जाती है, जिससे जीवन में होने वाली बहुत सी बीमारियों से और समस्याओं से बचा जा सकता है। श्रोता, स्वच्छता हमारे जीवन में एक ऐसी अच्छी आदत है जो हमें खुशी तो देती ही है, साथ ही तन मन की शुद्धता से आसपास की सफाई हो जाती है और या फिर हमारे घर आंगन हो या गली मोहल्ले की बात सब जगह जीवन को बदल सकती है, जो नया रूप देती है और गंदगी को दूर करती है। जैसे कि जानते हैं कि गंदगी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, साथ ही ये फैला हुआ कूड़ा कचरा वैसे भी शोभा नहीं देता और साफ सुथरा वातावरण मन को खुशी देता है। लेकिन श्रोताओं, जिस तरह से दैनिक जीवन में हम प्लास्टिक व पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, उससे प्रदूषण फैलता है। और वहीं पॉलीथीन का प्रयोग कर जब हम कहीं फेंक देते हैं तो अच्छी आदत नहीं है। पॉलीथीन को जब इधर उधर पड़ी हुई इन बिखरी पॉलीथीन को कोई भी पशु पक्षी खाते हैं तो उन्हें बहुत सी बीमारियां होने का भय बना रहता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और बहुत सी बार हमारे पशु से इनसे उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जहां कहीं भी आते जाते हैं तो चारों ओर हमें पॉलीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए में इस कूड़े को हम ऐसी जगह डालें, अच्छी जगह इसका निस्तारण करें ताकि इसे गंदगी ना फैले। श्रोताओं, स्वच्छता की आदत हमें हमेशा अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, साथ ही बच्चों को भी इस आदत के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि हमारे चारों ओर स्वच्छता बनी रहे और सुंदर वातावरण बन सके। इसके लिए कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए आप पहल कभी भी कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

श्रोतों, गर्मी के इस मौसम में तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ध्यान रखें, जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं। अगर हाँ जाना है तो पूरा शरीर को ढककर ही बाहर निकलें, सूती कपड़ों का उपयोग करें और समय समय पर पानी जरूर पीते रहें। श्रोतों, साथ ही चलते चलते आपसे इतना जरूर कहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में अपनों और अपनों का आप सभी ध्यान रखें। आज का दिन आप सभी के लिए खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का एक कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

यथा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे दीवर का लिखा गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था पारस मणि। श्रोताओं, आपकी सलामती आपकी सफलता को आगे बढ़ाती है और मंजिल तक पहुंचाती है और आपके सपनों को साकार होने में मदद करती है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़े और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है परिवार। गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत कल्याण जानन जी का है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये स्वरता लता मंगेशकर का फिल्म का नाम था अभिलाषा। शब्द थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का था। श्रोताओं, ये खूबसूरत पेड़ पौधे, नदी घाटे और पहाड़ मन को मोह लेते हैं। यही कारण है कि बार बार हम उन्हें निहारना चाहते हैं, इनके पास जाना चाहते हैं। और वैसे भी जितना चैन सुकून हमें प्रकृति से मिलता है, उतना हमें कहीं नहीं मिल सकता, और प्रकृति से ही तो हमारा जीवन है। ये संगीत उषा खन्ना का गीत, निदा फासली का आवाज, मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे।

लता मंगेशकर की आवाज़ थी, फिल्म का नाम था कुदरत। गीत था मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत आर डी बर्मन का था। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम प्रेम बंधन। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, चारों ओर गर्मी से जीवन बेहाल है। पशु पक्षियों का जीना धी पर हो रहा है। बस हर किसी को इंतजार है बारिश का, कि कब बारिश हो और गर्मी से निजात मिले। श्रोताओं, इस गर्मी के इस जीवन में जीने के लिए जितना पानी जरूरी है उतना ही हमें ध्यान रखना है। पानी को इसे व्यर्थ बहने से बचाना है, क्योंकि पानी से हमारा जीवन है। ध्यान रखें, जल है तो कल है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है प्यासा सावन। गीत आनंद बख्श, संतोष आनंद का, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, जीवन में हमेशा हर पल खुशियां हैं, बस ध्यान रखिए चेहरे पर कभी उदासी ना आने दो, जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में, फिल्म का नाम बातों बातों में।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 9:45 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम सेहत के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर सुनील कुमार झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय है बच्चों में पेट दर्द का कारण व उपचार।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे बच्चों में पेट दर्द लक्षण कारण और उपचार के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर SK झा को। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर SK झा, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: जी, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे सारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, बच्चों में जो पेट दर्द है वो साधारण शब्दों में कैसे हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे?
2: जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अत्यंत रोमांचक, मैं अपने शब्दों में बोलूंगा कि आपने विषय उठाया है। पेट दर्द की कहानी यह है, जैसे छोटा बच्चा है एक दिन का या 5 दिन का, तो वो अपनी दर्द कंप्लेन जो है अलग ही टाइप में बताएगा, रोएगा बच्चा।

0: चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेबल रहेगा, या फिर उल्टी जैसा लक्षण रहेगा।
1: जी
0: उससे आगे चलें, थोड़ी सी और बच्चा बड़ा हो गया तो पेट दर्द के लिए वो कि कभी स्टूल नहीं पास करेगा, कभी दर्द बताएगा, या भूख दूध नहीं पिएगा।
1: जी
0: 6 महीने से नीचे की ये कहानी एक संभव है, 6 महीने के ऊपर की कहानी ये संभव है कि पेट दर्द के साथ उल्टी बता सकता है, बुखार भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइप से एक चीजें चलती रहती है, कभी गैस बन जाती है बच्चों के पेट में, वो उस टाइप से हो जाती है। तो पेट दर्द के लिए अलग अलग चीजों को वो अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। बड़े जैसे उसमें 2 साल 3 साल तो वो एक आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बता देगा। तो मगर छोटे बच्चों में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो जैसे चिड़चिड़ा हो रहा है,
1: जी
0: सो नहीं रहा है या रोता रह रहा है,
1: जी
0: निश्चित रूप से जाने कि पेट में दर्द उसको हो रहा है। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हैं। शुरुआत से मैं शुरू करता हूँ, न्यूबॉर्न से शुरू करता हूँ।
1: जी
0: जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि मदर अपना फीड तो नहीं दे रही है और वो बोतल से दूध पिला रही है,
1: जी
0: तो बोतल से दूध पिलाएंगे तो यूजुअली गैस बन जाएगी और उसके वजह से पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि कहीं से इन्फेक्शन कोई सोर्स से आ गया। तीसरा जो कारण हो सकता है कि कभी जैसे कि आप देखें 1 साल के ऊपर के बच्चों को कीड़े की प्रॉब्लम हो, वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो उसमें हो जाता है। चौथा चीज, यदि कुछ बच्चे जैसे कि मान लीजिए कि सपोज करिए कि फास्ट फूड या कुरकुरे चिप्स वगैरह खा रहे हैं, तो उसके वजह से एसिडिटी और गैस बनती है, उसकी वजह से भी पेट में दर्द संभव है। इसके अलावा और सारे बड़े बड़े कारण हैं, जैसे कि अन्य बीमारी में जैसे जैसे बड़ों में होता है तो छोटों में भी ये चीज संभव है कि उसको इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, पेट का आंत का इन्फेक्शन हो गया। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जो इसके कारण हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या छोटे बच्चों में अपेंडिसाइटिस की वजह से भी दर्द हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है, अपेंडिसाइटिस आजकल कॉमन है क्योंकि फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे और पेट में दर्द बताते हैं और उसकी वजह से होता है। जैसे कि जॉन्डिस हो गया किसी बच्चे को, जो जन्मजात जॉन्डिस नहीं बाद की जॉन्डिस, तो ऐसे में भी पेट में दर्द संभव है। या फिर मान लीजिए कि वो कुछ बाहर का ऐसा खाना खा लिया जो दूषित खाना था और उसकी वजह से हो गया उसको, तो वहां पर इन्फेक्शन एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, तो ऐसे में भी पेट दर्द होता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने दूषित खाने की बात की, क्या
0: जी
1: दूषित पानी पीने से भी पेट दर्द हो सकता है?
0: पेट दर्द का बहुत बड़ा रीजन पानी ही है, क्योंकि आप जो ये दो प्रमुख बीमारियां बोलते हो कि टाइफाइड पीलिया और या जितने भी आंतों में इन्फेक्शन जो कॉमनली पहले के जमाने में कॉलरा बोलते थे, ये सब पानी से फैलने वाली है। इसका रूट ही है फीको ओरल रूट बोलते हैं आप, तो फीको ओरल रूट में तो पानी पीने से बच्चों को हो जाएगा।
1: डॉक्टर, एसके झा, जांचें क्या हैं पेट दर्द की?
0: जांच तो देखिए, यदि ये संभव मान लीजिए कि ये सारे चीजें आपने डायग्नोसिस कर लिया कि पेट में दर्द हो रहा है, तो जांच काफी सारा एक वाइड रेंज स्पेक्ट्रम है इसका, कि आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक बीमारी कोई आप यदि उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसके आधार पे आप भी आप उसको जांच करवा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि इसको पीलिया है तो उसके लिए लीवर प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे, टाइफाइड है तो टाइफाइड का टेस्ट करेंगे, या कॉमनली आप जैसे मान लीजिए सीबीसी वगैरह बोलते हैं तो उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था, आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि पेट दर्द कभी तो हो रहा है
1: जी
0: और कभी नहीं हो रहा है। आप जरा ये बहुत एक कॉमनली नोटिस कीजिएगा कि मैं बहुत दिनों से पेट में दर्द है, कभी तो बताता है कभी नहीं बताता है।
1: जी
0: तो मेजेंटिक लिम्फाडेनोपैथी गांठ बन जाती है,
1: जी
0: जैसे कि कोई आदमी फास्ट फूड और ये वो खा रहा है, इसके अलावा सब्जी कम खा रहा है, पानी कम पी रहा है, तो ऐसे बच्चों में मेजेंटिक लिम्फाडेनोपैथी भी हो जाती है। उसकी वजह से ऑन ऑफ पेन होता है, कभी तो अच्छा पेन बताएगा कभी तो नहीं बताएगा। तो आपके पास सारे संसाधन हैं, वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम जो जिसको आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के, मगर आप कारण और लक्षण के आधार पर भी आप बात कर सकते हैं कि इसको पेट में दर्द हो रहा है तो ये किसी एक बीमारी का पर्टिकुलर इंडिकेशन भी हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने तमाम लक्षण बताए, तमाम कारण बताए बच्चों में पेट दर्द के,
0: जी
1: डॉक्टर को कब दिखाएं? बच्चे में किस तरह का दर्द हो तो डॉक्टर के पास ले जाना उचित है?
0: देखिए, मेरे हिसाब से तो जो पेडियाट्रिक रेंज है इसमें आप के पास इतना ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यदि वेट करेगा तो बच्चा को तकलीफ होगी, वो तड़पेगा या वो दर्द रहेगा। और आप अमूमन देखिएगा कि बच्चे जब रोते हैं तो माँ सबसे ज़्यादा तेज़ी में आती है, तो मेरा मानना है कि जब भी आपको लगे कि शुरुआत में यदि आपको लगे कि कुछ ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया है, बाहर का खाना खाया, तो मैक्सिमम 24 आवर तक देख सकते हैं, और उसके बाद नहीं देखना चाहिए। आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट कोई भी चिकित्सक को दिखाना चाहिए जरूर।
1: डॉक्टर एस के झा, न्यूबॉर्न बेबी को लेकर, जो नए बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे?
0: न्यूबॉर्न बेबी में सबसे बड़ी बात जो मैं आज के तारीख में बोलना चाहता हूँ कि ये जितना भी आप समझते हो, ये बॉटल फीडिंग, टॉप फीडिंग जो बोलते हैं आप उसको, इसको आपको रोकना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आपको माँ का दूध पिलाएं, 6 मंथ तक कोई और दूध ना दें।
1: जी
0: तीसरा, यदि दूध देना है तो इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ 3 महीने से पहले गाय का दूध ना दें, निश्चित रूप से। आप भले ही आप कोई भी पाउडर फॉर्मूला मिल्क सेलेक्ट कर सकते हो, यदि आप अपना दूध नहीं पिला पा रहे हो। चौथा चीज जो एक आता हूँ, माँ का दूध जन्म के तुरंत बाद पिला दें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आधे घंटे के अंदर निश्चित रूप से पिलाएं, ये फर्स्ट वैक्सीन है और ये इतना कारगर होता है कि पूरे लाइफ लॉन्ग जो है कि वो उसको करता है। आपने जैसे ही बाहर का दूध पिला दिया, तो बाहर का दूध कंपैरेटिव टू माँ के दूध से मीठा होता है,
1: जी
0: तो जब एक बार वो फर्स्ट रिकॉग्निशन जो बच्चों का होता है, जो स्वाद वो जान जाता है, तो वो फिर उस चीज को ढूंढता है, तो माँ का दूध वो फिर पकड़ना नहीं चाहता। तो प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि देखिए, बच्चा जब तक शक नहीं करेगा तब तक मिल्क का प्रोडक्शन भी नहीं होगा।
1: जी
0: तो बच्चा शक कब करेगा, जब उसको टेस्ट का पता होगा, और टेस्ट आपने फर्स्ट टेस्ट से आपने उसको दे दिया फॉर्मूला मिल्क,
1: जी
0: तो माँ का दूध पकड़ता नहीं है। तो मदर कंप्लेन करती है कि बच्चा दूध पी ही नहीं रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हर माँ को यही बोलता हूं कि जो एक और चीज बड़ा महत्वपूर्ण मैं बताना चाह रहा हूं कि पहला 3 दिन कम दूध आता है। दूध यदि उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें दूध 3rd डे ही प्रॉपरली आती है, या किसी भी मदर को 3rd डे प्रॉपर दूध आता है। तो इस बात से ना घबराएं कि दूध नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूध होता ही है। दूध जितना हो रहा है उसको, फर्स्ट जो दूध होती है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम।
1: जी
0: ये एक महत्वपूर्ण कुदरत ने जो एक सिस्टम बनाया, उसमें प्रचुर मात्रा में सारे पौष्टिक चीजें होती हैं, जो बच्चे के जीवन के लिए, यदि वो 5 बूंद या 20 बूंद ही आ रहा है, तो बच्चे के जीवन के लिए पर्याप्त।
1: जी
0: तो ये एक जो लोगों के में भ्रांति है कि बच्चा दूध नहीं पिया, बच्चा ये हो रहा है, तो बच्चा दूध थोड़े मांग रहा है, वो लोग जबरदस्ती पिलाते हैं। तो मेरा कहना है कि बेस्ट मिल्क यदि बच्चों को पिलाया जाए, तो बहुत ही रेयर संभावना होगी कि ये जो पेट में दर्द और ऐसी चीजों के बारे में, क्योंकि उसका रिपरकशन आप देखिए, आप बोतल से फीड कराते हो, बोतल आप प्लास्टिक का होता है या क्लोज्ड स्पेस है, फर्मेंटेशन होती है दूध की, तो उसमें आपका इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो जो चाहे अनचाहे आप बच्चों को एक इन्फेक्शन दे रहे हो और उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, दूध आप बाहर का पिला रहे हो, बोतल से पिला रहे हो, गैस बनने की संभावना प्रबल है। तो माँ कंफर्टेबल समझती है कि बच्चे को दूध दूध में लगा दिया, बोतल पकड़ा दिया, मोबाइल देख रही है।
1: जी
0: तो ये इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा जगना पड़ेगा, बच्चों के पीछे मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो हर बच्चों को, उनकी माँ को यही बोलता हूँ, फॉर्मूला मिल्क बनाई गई है, एक अच्छी इजाद है। बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, देना चाहिए, मगर फॉर्मूला मिल्क माँ के मिल्क के बराबरी नहीं कर सकता।
1: डॉक्टर एस के झा, बच्चों में पेट दर्द का उपचार क्या है?
0: देखिए, 2-3 चीजें बड़ा घरेलू बताऊंगा। यदि छोटा बच्चा मैं बोलूं कि नवजात की बात करें, तो माँ जो है कि एक तो अपना दूध पिलाने की बात मैंने की ही, घरेलू उपचार कर सकते हैं,
1: जी
0: जैसे अजवाइन का पानी। एक बड़ा बहुत सरल उपाय है कि अजवाइन का पानी ले लिया जाए,
1: जी
0: मदर ले लेगी, मदर थोड़ा सा ऐसा खाना जिसमें कि गैस का बनता हो, कम स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी फूड, अत्यधिक घी, ऐसे। 3rd जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी खूब पिए मदर।
1: जी
0: मदर के मिल्क में यदि पानी का संतुलन बराबर रहेगा, तो तो संभव ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बच्चों को दवाई तो तब देंगे ना जब आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
1: जी
0: तो ओवर काउंटर बच्चों को, छोटे बच्चों को मेडिसिन देने की सलाह नहीं दी जाती।
1: जी
0: ऐसे तो आती है, दर्द निवारक दवाई आती है, मगर किसी भी नियरेस्ट चिकित्सक को दिखाना ही चाहिए। कोई भी आदमी जाके एक मेडिकल स्टोर से दवाई ले आता है, ये सही नहीं है। अब दर्द का कारण क्या है,
1: जी
0: पहले कारण ही तो जानना चाहिए। दर्द है, मगर दर्द अपने आप में बीमारी नहीं है, दर्द अपने आप में एक लक्षण है।
1: जी
0: बीमारी तो कुछ और है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो जब तक हम बीमारी नहीं ठीक करेंगे, तब तक हम दर्द नहीं ठीक कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग लेके कोई एंटीबायोटिक्स अपने बच्चे को दे देते हैं, कितना सेफ है?
0: नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। और अभी बात कर रहे हैं हम लोग छोटे बच्चों में, यूजुअली जो इन्फेक्शन होता है
1: जी
0: आंत में या पेट में, उसका 80% काउज वायरल है। तो एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया है, आप
1: जी
0: एंटीवायरल तो नहीं दे रहे हो ना। 20% केस में जहां की मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, या डिसेंट्री हो रही है, या फिर फीवर है, आपको लग रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, तब वहां पे आप एक तरह से सोच सकते हैं कि बैक्टीरिया होगा। मगर यदि पेट ही दर्द है और लूज मोशन हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस है कि बैक्टीरिया होंगे। 80% 70-80% केस वायरल होते हैं शुरुआती फेज में,
1: जी
0: तो बिल्कुल ही मना होना चाहिए। हम लोग के हाथ में ये सारी बातें नहीं है, क्योंकि लोग लेते ही हैं और दवाई खा रहे हैं, मगर ये सही नहीं।
1: डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मिथक जो समाज में प्रचलित हों और बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हों?
0: देखिए, जो सबसे बड़ा चीज है कि दो तीन चीजें मैं बताऊंगा इसके बारे में। जैसे कि मिथ क्या है कि दांत आएगा तो बच्चों को, माँ सब चीज को दांत से जोड़ देती है कि बच्चे का दांत आ रहा था इसलिए उसको बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया या दस्त हो रहे हैं। दांत आने पे दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक लूज मोशन हो सकता है और कभी फीवर आ सकता है, इसके अलावा और तीसरा चीज नहीं होता। तो ये एक बड़ा मिथ है कि हर चीज को दांत से नहीं जोड़ना है, पहला तो ये। दूसरा ये है कि फीडिंग मदर मिल्क है 6 मंथ तक, और 6 मंथ के बाद आप एड ऑन कर सकते हैं जो भी करना हो, फूड वगैरह 5+ से भी आप शुरू कर सकते हैं मंथ से। तो खाने के संबंध में ये,
1: डॉक्टर एस के झा, कुछ माताएं या दादियां हमारी ये करती हैं, बच्चों के पेट में अगर दर्द है तो हींग को वो घोल कर बच्चे के पेट पर लेप कर देती
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, ये तीन चीज मैं बताऊंगा इस संबंध में कि जैसे हींग है, ये पीस के नाभि के चारों साइड से लगा, मैं हम लोग जब चिकित्सक नाभि बना था तब बचपन से देखता है, और बिल्कुल सही बात है। दूसरा चीज जैसे कि गोबर का उपला है, आप उसको सुलगा लें बाहर और उसके ऊपर अजवाइन रख के उसके धुएं से पेट सेके बच्चे को, ये भी एक कारगर उपाय है। तीसरा ये है कि माँ यदि पानी ज्यादा पिएगी ना,
1: जी
0: तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को होगी नहीं। जैसे माँ से बड़ा रिलेशन है इसका पेट का,
1: जी
0: यदि माँ अपना दूध पिला रही है तो माँ, यदि माँ को गैस बनती हो, सपोज
1: जी
0: की जो कीजिए कि माँ को थायराइड है और माँ को गैस बनती है, तो हो सकता है बच्चों को भी गैस बने।
1: जी
0: तो ये एक बड़ी संभावना है कि मदर से रिलेशन है। तो चूंकि दूध दे रही है, मदर दे रही है, पिला रही है, तो मदर यदि ठीक रहेगी, शुरुआती के 6 महीने तक काफी असर पड़ता है इसका डोज देना,
1: जी
0: यही है उसका।
1: डॉक्टर एस के झा, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं को बच्चों में पेट दर्द, लक्षण, कारण व इलाज विषय पर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एस के झा से रमेश चंद्रा की बातचीत। विषय था बच्चों में पेट दर्द, कारण व उपचार। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा जनानों का वास्ता। शाम 5:10 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर। कृषि जगत का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने से भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में

0: भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने फिनबोध और उत्तरावाणी ऐप और असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर पाठ्य सामग्री का लोकार्पण किया। राज्य में टेक होम राशन का 100% वितरण चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अग्निवीर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी। योग नगरी ऋषिकेश से 7 ज्योतिर्लिंग और साउथ दर्शन के लिए शुरू होने जा रही दो भारत गौरव यात्रा ट्रेन। पहली ट्रेन 12 से 23 जून तक 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगी। ईद उल अजहा को लेकर अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस, 7 सुपर जोन, 17 जोन और 34 सेक्टर में जिले को बांटकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। ग्रीन कुंभ की दिशा में सामाजिक संगठनों में दिख रहा उत्साह, हरित हरिद्वार अभियान से जुड़े रहे लोग। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नैनीताल जिले के काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल के बीच अस्थायी रूप से चलाई जा रही सुपरफास्ट साप्ताहिक रेलगाड़ी का परिचालन अस्थायी रूप से किया जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्या इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिरदर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या हैं जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना, मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अंकित तिवारी की आवाज़ में गीत था। फिल्म का नाम था विलेन। गीतकार थी मनोज मंदशीर और संगीतकार थी अंकित तिवारी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: शिल्पा राव की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम इंग्लिश विंग्लिश। ये संगीत है अमित त्रिवेदी का और गीत स्वानंद किरकिरे का।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस दे
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह को, फिल्म का नाम था रब ने बना दी जोड़ी। गीतकार थे जयदीप साहनी और संगीतकार थे सलीम सुलेमान। श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम में ही पर संपन्न हुआ। फिल्म संगीत अब आप सुन पाएंगे दिन में 11 बजे व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हो रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए तैयार की गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं को अब खिलाड़ियों और आम खेल प्रेमियों के लिए पे एंड प्ले व्यवस्था के तहत खोलने का फैसला किया है। खेल विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न स्टेडियमों, खेल मैदानों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग अब निर्धारित शुल्क देकर नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से जहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, वहीं खेल विभाग को भी नियमित राजस्व प्राप्त होगा, जिसे खेल विकास निधि में जमा किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकार का उद्देश्य खेल सुविधाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें खिलाड़ियों के नियमित प्रशिक्षण और प्रतिभा निखारने का केंद्र बनाना है। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार बुकिंग और समय स्लॉट की सुविधा यूनिफाइड स्पोर्ट्स

के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बन सके। हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने विकासखंड कार्यालय रुड़की का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित पाए गए सहायक विकास अधिकारी पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने वीवीजी रामजी योजना की प्रगति में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए ANPR से संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन, पुलिस, राज्य कर एवं खनन विभाग सभी को ANPR कैमरों के एक्सेस की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रदेश में एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा अपने और पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों की संकलित रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को मासिक रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व एक उपसमिति गठित कर प्रस्तावों की स्क्रूटनी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में डुप्लीकेसी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रा 2026 के दौरान हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष जांच अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के तहत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी और उनकी टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और कैंटीनों पर छापेमारी की। भगवानपुर क्षेत्र में एक कैंटीन से लिए गए पनीर के नमूनों में गुणवत्ता संबंधी कमी मिलने पर करीब 4.5 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं कई स्थानों पर साफ सफाई और खाद्य मानकों में अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारियों को ताजा खाद्य सामग्री उपयोग करने, एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद न बेचने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मैदानी जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे गर्मी का असर और बढ़ सकता है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का मानना है कि इस बदलाव के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:35 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत।

बदिर गया छनु चंपुड़ क्या गयू च जनी देख दो राज को फेरों को बंदो बलाएगे फेरों का समय।

कि राजा धाम जोज निराली सुनी गर्भवती वे गायो राजा जांदो कई वे सैला शिकारा कि सात सौत क्या काम करिंदनु राजा धाम देव को बोलो जो ये मोरा।

जनी राणी देखी राजा धाम दो घर बड़ो वे गई। राणी देखी राजा धाम दो ने फिर वापिस भावर जंगल पर चल गई। लगी राणी तय कोखी की बिदना सात सौ तो न यहाँ को

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं, आप सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 आकाशवाणी देहरादून और मैं हूं आपकी उद्घोषिका सुहासिनी। लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाट्सएप फरमाइश। तो बस भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत के बोल, साथ में फिल्म का नाम और अपना नाम व पता। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और इसी के साथ बढ़ते हैं श्रोताओं अब पहले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है कोरबी बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है कासगंज से रफत। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है, श्रोता है बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी, बिट्टू, सरस्तरानी और हिना कौसर। फरमाइश करता है डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका।

पटेल, गांव ध्यांगला, जिला कुरुक्षेत्र से मांगेराम सैनी, यशवी नेवीसा, दिपल देवांश, यामी सैनी और कनिका शर्मा। सिंधौली मीरगंज बरेली से श्रोता है दिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। गांधीबाग अकोला से फरमाइश लिख भेजी है रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी, सीताराम कांगड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। स्टेशन रोड जमशेदपुर से श्रोता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म शागिर्द से इस गीत की।

0: मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है। इस दिल को प्यार करना
1: अय्या।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: जो लिसनर्स हमसे भी अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे, कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश और आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 7088-000-731 पर। अगला गीत सुनना चाहा है भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ भोला वाकतरिया प्रवीण रियांश और प्रतीक उज्जैन मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज मीना योगेश मैंडी सौरभ साइना और निवान शर्मा। पोटिया कला दुर्ग से श्रोता हैं संजय साहू सुजाता शशांक और सीमा साहू। रविंद्र सिंह छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार नई दिल्ली से। साथ ही श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने उषा ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक। झज्जर हरियाणा से बिट्टू और रीटा भाटिया। रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर स्वीटी छाबड़ा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज गीतिका और भानु प्रकाश। श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्हार अविका जीविका शानू और अर्चना कुम्हार। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है दीपक कुरहाड़े वंदना आशीष और कल्पना कुरहाड़े शांति निवास लोहेगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से। इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी और अल कबीर। बालोद छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। राजस्थान से श्रोता है रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान और इरफान खान। पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे उषा अनुश्री और धनश्री। मिस्टर नटवरलाल प्रिया मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन तिल्लु नायक साथ ही मधु नायक। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म बेटा से इस गीत की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 11:20 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, अगला गीत सुनना चाहा है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू ने, परमिंदर सिंह, सोनी, करण, रानो, दीपू, वीरपाल और कुलदीप, पंजाब से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, मजनू का टीला से श्रोता हैं कमल बालूझा, मधु और सागर, साथ ही उमंग मलिक, आकांक्षा और माही। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से फरमाइश लिख भेजी है भारत, अंजू, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष ने, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, सहारनपुर से श्रोता है सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लला, फरहान लला और समयरा आजमीन, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से फरमाइश लिख भेजी है रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित और गर्वी ने, कैलाश फुलमाली, दीपक, समर और वेदिका फुलमाली, अहमदपुर, खैगांव, खंडवा, मध्य प्रदेश से, वार्ड 1 पोफाली, जिला यवतमाल से श्रोता है जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और

अर्चना, बोधराज खोरवाल, कमला, गीतिका और भानु प्रकाश उत्तम नगर दिल्ली से, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल दिल्ली से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म आरजू से इस गीत की।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब

0: की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11:28 हुए हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अगला गीत सुनना चाहा है कौरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू ने। महालिंगापुर से आयनुद्दीन बनहाटी, मुमताज, रियाज, रुबीना, जुनैद, अंजुम, मारिया, हुमैरा, सलमान और शीमा। PS नभाकर, निर्मला, विशाल, नारायण, सोपाल और आशीष मुरहेकर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से श्रोता हैं तुलसी, वीणा, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, बहारुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, शिफान सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया, अलीशा, शकील, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। पतेह खालसा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। बीजना मुरादाबाद से श्रोता हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा, परिधि, मायरा, कांटा रोड, वाशिम महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा और हरपाल कौर। भेरूलाल वागदरिया धाकड़, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया और पवन राज जाधव, मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन, मालियान मर्धना मेरठ से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, राकेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। साथ ही श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म सन ऑफ इंडिया से इस गीत की।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत सुनना चाहा है खेल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल चंद, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू सिक्का ने। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने। पटियाली लोड गंज चुंडवारा से श्रोता है आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया, आहिल अरहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। हैदराबाद से श्रोता है कृष्णा गौड, मलेश गौड, विजय लक्ष्मी और इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता है रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेदा, आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। तेलंगाना से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। उत्तम नगर दिल्ली से जॉनसीना, बीआर टेलर और सुमन, सरिता, नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनफ और यशफ अब्बासी। मारहरा दरवाजा एटा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। तेलंगाना से श्रोता है कानोगुला, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और इनका पूरा परिवार। गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सनावत से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री और अल्तमश खत्री, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ।

अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुचा सिंह पाठक, अनारकली बाजार जगराव से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। तेलंगाना से मोहम्मद वहीद रुमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फजी, जुनैद जुबैर, मुकरम, मुनोमान, फुरकान, जकीर और फजील, मिलन, निर्मोही, ज्योति, आरती, कृष्णा और जय निर्मोही, उत्तराखंड, चमोली, गढ़वाल से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नगमा नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, जसपुर, उत्तराखंड से, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्मण मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, खैल बाजार पानीपत से, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष कोयल और डुकू सिक्का। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म मौसम से इस गीत की।

0: Akashvani at 90.
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:45 हुए हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अगला गीत सुनना चाहा है उदयपुर से रमेश नचानी, भारतीय विनीत मिथिल और प्रगति। हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशत। ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से। धनौली तिलीवाला से निसार नौशाद, आलिया और आयान बाबू। करताल हैदराबाद से कानूगुला, साथ ही फरमाइश लिख भेजी है लुधियाना से विनोद, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाशपुरी, नीलम, रमा, पालीपुरी, सुनील पाठक, विगेपुरी और विनोदपुरी ने। रामपुर से असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी, राशिद भाई और सईद भाई मंसूरी। साथ ही फरमाइश करता है गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश, चंद्र डांगी। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। उत्तम नगर दिल्ली से जॉन सिन्हा, बी आर टेलर और सुमन सरिता। सहारनपुर आई टी आई से ब्रजेश कुमार सैनी, वीरपाल सिंह,

और साथ ही श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान, सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी, एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से, मध्य प्रदेश जिला दमोह ग्राम नरसिंहगढ़ से संतोष अहिरवार, पार्वती और संदीप अहिरवार। श्रोताओं इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है, श्रोता हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख, प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू, कुमार विमल, ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा, देव देवांशु और डब्लू जी, मेन रोड फारबिसगंज बिहार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म लव स्टोरी से इस गीत की।

श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली और मुजफ्फर अली ने। उत्तराखंड पौड़ी से उमा महेश्वरी, सोनू मुन्नू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आरुष और शौर्य दिनेश ने। मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, ग्राम जखड़ गांव अहमदनगर से। उमा महेश्वरी, गोपाल नाई, हैदराबाद से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, सोहन, हरमिंदर चावला, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है, श्रोता हैं कोयते बस्ती पुनावले से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा और साइशा सोनवने। जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, आयन मंसूरी और जिशान मंसूरी। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से। अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म चित्रलेखा से इस गीत की।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अंतिम गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम, विशाल देशानी और निमित आहूजा ने। विजय कविता विशाल सोनू मोनू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, और साथी फरमाइश लिख भेजी है अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल्ला भाटापारा छत्तीसगढ़ से, पायल जोशी, सोहन जोशी, प्रवीण कलावती भाटापारा छत्तीसगढ़ से, इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। करीमनगर से लक्ष्मी नारायण विजय अभिनय और साई किरण, गोविंदपुरा अहमदनगर से सविहा मिखाइल और जैनब, गोला बाजार बक्सर से श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य, सोनू सुरेश, आजपल पंकज, काजल, मुकेश कश्यप, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म फिलौरी से इस गीत की।

0: इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम वर्ड से फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SI प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court said that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes, stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life. Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementaries between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaboration. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by the Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both ministers. The theme of International Day of Yoga 2026 to be observed on 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. Union Minister of State for Ayush, Independent Charge, Mr. Pratap Rao Jadhav said this while attending the Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 in Khajuraho today. At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli air raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in forenoon trade today. The Sensex rose by 69 points to 76,079 and the Nifty 50 was up by 27 points to 23,941 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12:10 हुए हैं आप सुनिए न्यूज हेडलाइंस
3: ये आकाशवाणी देहरादून है अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए तैयार की गई विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं को अब खिलाड़ियों और आम खेल प्रेमियों के लिए पे एंड प्ले व्यवस्था के तहत खोलने का फैसला किया राज्य में टेक होम राशन का शत प्रतिशत विवरण चेहरा आधारित प्रमाणीकरण के जरिए किया जाएगा मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को दिए निर्देश अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत अग्निवीर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी ग्रीन कुंभ की दिशा में सामाजिक संगठनों में दिख रहा उत्साह हरित हरिद्वार अभियान से जुड़ रहे लोग हरिद्वार मुख्य विकास अधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की इस दौरान बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित पाए गए सहायक विकास अधिकारी पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक संपन्न पूरे प्रदेश के लिए ANPR से संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी चारधाम यात्रा 2026 के दौरान हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष जांच अभियान जारी खाद्य मानकों में अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए बागेश्वर में जिला में आज से 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ इंटर कॉलेज बजूला में कुमाऊनी भाषा लोक संस्कृति और पारंपरिक गीत संगीत से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा पिथौरागढ़ में BSNL नेटवर्क में आ रही परेशानियों का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया विभाग को 1 सप्ताह के भीतर नेटवर्क व्यवस्था में प्रभावी सुधार करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए पौड़ी जिलाधिकारी के निर्देश पर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की गई जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधारने के अधिकारियों को निर्देश दिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान नमस्ते योग ऐप के माध्यम से कर्मचारियों को कराया जाएगा योगाभ्यास पौड़ी जिले में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश की समस्या को लेकर नगरपालिका ने सख्ती बढ़ाई जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश CCTV में रखी जाएगी नजर गोवंश छोड़ने वालों पर कार्यवाही तय आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12:12 हुए हैं आप सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए नात सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अब्दुल रब चौस के स्वर में ये नात

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए नात। अब आपको सुनवाते हैं रानी रूपलता के स्वर में ये नात।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:20 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए नात।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए नात। अब आपको सुनवाते हैं जानी बाबू कव्वाल के स्वर में ये नात।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए नात। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम जनानों का वास्ता।

जनाना का वास्ता सुरण वाल सब है दीदी भोजी काकियन के पहला प्रणाम और नान बैणी भुलियन के ढेर सार प्रेम शुभाशीष। दीदी बैणियों मैं भल हरूँ और आशा करनूँ कि आप सबले भल होला और अपो काम काजन मा व्यस्त होला। दीदी बैणियों काम काजल याद आ कि हम जो सैणी हुनु ना हम अपो काम काजन मा इतू व्यस्त रहनू कि अपो शरीर मा हुण वाल संकेतों मा ध्यान ही नहीं दिन। जस की रोजा रोज खौर पीड़ थकान या फिर कोले असामान्य लक्षण यो संबंधे बचने जी हम श्रेणियों के बखत बखत पर अपु स्वास्थ्य जांच ले कराते रूण छे जो कि हम श्रेणियों लीजी बहुत जरूरी छू। किले की जाचल हमन के बखत पार बीमारी पत्त ले चल जल और हम बखत पर इलाज ले करे लियून और अपु स्वास्थ्य के बेहतर बने सुकून। आज वो श्रेणी अलग अलग उम्र मा अलग अलग स्वास्थ्य जोखिमों सामना करनी। दीदी बहनियों आज एक दौड़ भाग वाल जिंदगी बटी अपू लीजी ले बखत निकालन बहुत ही जरूरी छो। अपू व्यस्त दिनचर्या बटी थोड़ समय अपू लीजी निकाल बेर हम अपू के दिन मान हुणवाल थकावट बटी बचे सकनू। चाहे हम अपू लीजी आधू का घंटे निकालूं पर निकालन जरूर छे और यह आधु घंट मा ही अपू रुचिक कामों के करण छे और योग के लिए अपू दिनचर्या मा शामिल करण छे। योग केवल शारीरिक फिटनेस नहीं छू बल्कि मानसिक स्वास्थ्य लीजिए हम श्रेणियों लीजिए बहुत जरूरी छू। नियमित योगल तनाव कम हो नींद भला शरीर मा लचीलापल ने बढ़ूँ खास कर वे गर्भावस्था और मोनोपोजक पखत मा। योग एक बैलेंस के बनाई रखूं जेल की श्रेणियों में सकारात्मकता बढ़ूँ। तो दीदी बहनियों छुई बात तो हम अगिन के लिए लगाते रून पहली आबक के आजक कार्यक्रम का बारे में बता दिनू। आज का कार्यक्रम में गीत संगीत रंत रेबार तो होला ही दगड़ में हम आपके सुनून भली भली एक गढ़ कहानी न्यूतू जमे हमर कहानीकार छन श्रीमती कुसुम नेथानी। यह कहानी पूर्व प्रसारित छो तो यह कहानी सुनन हबीर पहली आपके लिए जानू कुमाऊ का छोर और सुनोनू लीला बिष्ट को गायो भलू भलियो कुमाऊनी गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: स्वागत छु आप सबने दीदी बोलियन का एक बार फिर आप बोली भाषा का कार्यक्रम जनन का वास्ता में और आपका दगण माँ मीछो कुसुम पिलखवाल। दीदी बहनियों अल्ले आपन सुनो रेबार रेबार हबे पहली आपन सुनो लीला बिष्ट को कायो भलो भल कुमावनी गीत और आशा करनू यह गीत आपके जरूर भल लगुनल। दीदी बहनियों अब आपके सुनू एक गढ़वाली कहानी न्यूतू जैक कहानीकार छन श्रीमती कुसुम नेथानी। तो आवा सुनू यो भल भल कहानी।
5: कहानी को नौच न्यूतू 80 वर्षे सुदर्शनी फूफू सुबेर बिटी बिजा परेशान छे। वी कै हार्ड चैन नी पड़नू छो। कै दिन बिटी वी का द्वि घुंडो में भारी पीड़ा छे। कै तरह दीवाल पकड़ी वह कमरा बिटी भय रह गए छे। बेचैनी का वजह से वह पोड़ नहीं सकनी छे। वी का घुंडो में खड़ होने ताकत भी नहीं छे। पर इबरी सरेल से ज्यादा वी को मन घमतोल में पड़ू छो। वह सोचनी छे आज सरले नौनी नीरू को ब्योच सरे गांव वक पहुंची गए होलू और वह लाचार वे की यक पड़ी छे। हे प्रभु कोई चमत्कार कर ज्या सिवा भी झट वक पहुंची जाओ। आज ये भगत भी बरसों पुरानी बथ याद आनी छे। 25 वर्ष पहली सरला ये गांव नए ब्योली बनी की छे। वी को ब्यो गांव का प्रधान श्यामलाल जी का जेठ नौना मोहन दगड़ी धगा धूम से वे छो। श्यामलाल जी की घरवाली मीना 2 बरस पहली लंबी बीमारी का वजह से स्वर्ग सिधार गए छे। उबरी शहर में पढ़ी लिखी नए ब्योली सरला गांव का रीति रिवाज नहीं जान दी छे। 11 में वी की ये सब बताने वाली भी कोई नहीं छो। वी यख ए की सरे रीति रिवाज सीखण पढ़ना छा। वे टाइम पर सुदर्शनीन वी की हर जगह मदद करी और वी अपनी जी की कमी महसूस नहीं होने दे। 11 में कोई काज होन छो तो सरला झट अपनी द्यूर भेजी की फूफू ते बुले लेंद छे। इतका मान सम्मान पै की सुदर्शनी भी खुश छे। देखते देखते सुदर्शनी ये परिवार को खास हिस्सा और सरला की जरूरत बनेगी। सरला का 4 द्यूर और 3 नंद छा। तो कब्यो में सुदर्शनी मैनो तलक सरला का यक वी की मदद का वास्ता सदन खड़ी रहे। सरला की अपड़ी भी एक नौनियाल और एक नौनी छे। सरला फूफू की बहुत इज्जत कर दी छे। ब्यो का बाद वी का सभी द्यूरों की कुटुमदारी फलनी फुलनी छे। नौनियालू का नामकरण से लेके हर बरस जलम बार पर वह सबसे एथर पहुंच जान छे। उन तवा गांव में सभ्यों का काज में हाथ बटोनो पहुंच दी छे। पर सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान वी सरला का यख मिल दु छो। बरस बितना छा और सुदर्शनी को सरेल बुढ़े होन जानु छो। 75 वर्ष की उम्र में सुदर्शनी को सामाजिक दायरा छोटू होन लगी। पहली वह कखियो कखी पहुंच जान छे। अब रात में वी इना उना जान में दिक्कत होन लगी और आंख अभी कमजोर हो गए छा। गांव वाला जांच काज में भी

0: मैं याद नहीं करदा छा, ई उम्र माई भरी इकुली छे। बाल विधवा सुदर्शनी अपनी सारी जिंदगी मेहत मा इज्जत से काटी। छोटा बड़ा सभी वी फूफू बोल दो छा, कभी कोई वी की तरफा उंगली नहीं उठा सकदू छो। गांव वाला अपनी बेटी बारी थे वी की मिसाल दींद छा। विधवा सुदर्शनी शुरुआत मा सौराज छोड़ी के बेबूबा और दुई कण सा भूलो दगड़ी मेहत मा रोन लगी। कुछ बरस बाद वी का बेबूबा सरक सिधार गेन, रुपये कमाणो दुई भुल्ला दिल्ली चली गेन। अब भुल्लों की कुटुमदरी जिम्मेदारी भी वी का मथी छे। तो का पिछने कुछ टाइम बाद वो भी वक्त चली गेन और वक डारा माँ इकुली रहेगी। गौ माँ दीदी का छौंदा तो अपना खेती बाड़ी और पोंगड़ों की फिक्र नहीं छे। वी का खर्चा पानी का वास्ता वो हर महीने रुपया भेज दींद छा। भुला और बुआरी का छौंदा सुदर्शनी ते कभी रुपयों की फिक्र नहीं रहे। कति बरस बीत गेन और सरे गांव वी को परिवार बनेगी। भूलों का स्वर्ग सिधरना बाद भतीजोन वी की सुध नी ले और रुपया भेजना बंद कर देन। अब जब वी को सरेल बीमार रोन लगी तब दवा खानों का वास्ता भी वी में रुपया नहीं छा। खेती पानी और पुगणो जो थोड़ा बहुत रुपया मिल दे छा तो सीवा कै तरह अपनो काम चलोनी छे। ई उम्र मा भी पुछ दर कोई नहीं छो। पहली गांव का छोटा नौना कभी कभी वक वी का द्वारा ऐजान छा। फल फूलों की दाढ़ी का लालच मा वह फूफू का वार धार रिटना रोंदा छा। तो का इरादा चित है कि वह तो अपना सामने बिठाई के पहली छुई बत लगाउंदी छे और फिर एक दुई दाणी दींद छे। सुदर्शनी ई उम्र मा सरेल से लाचार हुई गए छे। गाँव का नौनियाल अब लुक छुपी की फल फूल और अफू तोड़ी ली जान लगिन। ब्योसी हफ्ता भर पहली सरला नीरू ले की फूफू मिलनो वी का डियारा है। तो वी का खुटो में सेवा लगे लड्डू का डिब्बा वी थमे की सरला बोली, फूफू तुम्हारी ई नतेणो ब्यो कारी चे, तुम ते न्योता देना बाना हम दुई आया छा। मेरी हालत तो देखनी लगी छे सरला, अब मी लाचार वे ग्यों। सुदर्शनी बोली, ये ब्यो मामी तुम्हारी कमी खटकनी राली फूफू। सरला बोली, वे दिन मेरा प्राण भी डियारा में कख लगलू, वो तेरा ओर पोरी रिटन उड़ालू। सुदर्शनी अपना मने बात वी बता दे। ज्यादा देर फूलू फूफू का हाल चाल लेकी सरला बोली, चल दू छो फूफू, डियारा में बिजा काम पुड़िया छन। सभ्य नाता रिश्तेदार पहुंच गए होला सरला, सुदर्शनी पूछी, ओणी लग्या छन फूफू, ब्यो से पहली पहली पहुंची जाला। सरला फूफू को मान रखना बाना टाइम निकाली की वी बुलाणो अपू यख है छे। सुदर्शनी नीरू की ससुराल का बारा माँ भौ कुछ जणन चाणी छे पर सरला माँ बताणो टाइम ही नहीं छो। जांदी दान नीरू फूफू का खुटो माँ सेवा लगे तब वीन ढेर सारा आशीष दे की वी विदा करी। तबर बिटी वी चैन नी छो। ब्यो को दिन नजीक एगे छो, मोहन गांव को जण्यु मण्यु आदिम छो। सुदर्शनी जण दी छे वे की पहली नौनी को ब्यो गाँव माँ बहुत धका धूम से होलू। सरला का दिनिया लड्यो अभी तलक उन्नी धरिया छा। वे दिन बिटी वी का धारा कोई नहीं है छो। वी ब्यो की तैयारी का बारा माँ भी कुछ पता नहीं लगनु छो। वह सोचनी छे नीरू का ब्यो को बुलावा आयु तो न्यूत भी देण पोड़ लू। ये सोची के सुदर्शनी को प्राण निरसेगी। कहते रहा उठी कि वी ने अपनो पुरान बक्सा खोली, बटुआ में 200 रुपया का नोट छो। इतगा रुपया उनके होलू, अभी मैंने पूरा होण माँ ठीक एक हफ्ता रही हूँ। 51 रुपया न्यूत दे ली तो मोहन क्या सोचलू, सहरी जिंदगी जय परिवार दगड़ी व सुख दुख में कट्ठा रहे, अब न्यूता नौ पर वह 51 रुपया देनी चे ना। वह सरला यख न्यूती नहीं देली, ब्यो होना बाद नीरू वी मिलनो जरूर आली। तबरी वह अपनी लाचारी बते की वी का हथू माँ 51 रुपया धार देली। अफू तय समझेगी सुदर्शी 200 को नोट वापस बक्सा मत संभाल दे। अपनी लाचारी पर वी का आंखों में आंसू अगेन। बिजा देर तलक वी को मन इना उना भटकनु रहे और कुछ देर बाद घूम फिरी की फिर सरला का डियारा नीरू का ब्यो कारिज पर लौटेगी। ब्यो का दिन सुबेर बिटी वक ढोल दमाव बजना छा। वह सोचनी छ हल्दी हाथ निपटी की नीरू तय बांध देने तैयारी शुरू हुई गई होली। आज का तो अच्छू घाम लग्यू, सभी जना ना मांगल गीत लगेगी वी बांध देना होला। सुदर्शनी अपनू मन वक बिटी हटे ही नहीं सकनी छे। वी भरोसा छो कि वह ब्यो मत जौ नी जौ, पर तब सरलवी का वास्ता दाला पकौड़ा र परोसु जरूर यक पहुंचा ली। पर नियुत दिया बगैर खाणो खाणो वी को मन तैयार नी छो। वह अफू अफू बबड़ान लगी, मी सरला ते पहली बतेर देन छो कि मेरा वास्ता परोसु नी भेजी, अब ब्यो कार्यो चू खाणो वी हजम नी होंद। पर परोसु लौटाण पर सरला नड़के जाली। वी को मन दुविधा मचो, दुफरी वेगे छे और अब ढोल धमो की आवाज भी नहीं आनी छे। तभी कह द्वार खटखटे, कौं का दुई नौना रामू और देवू आया छा। फूफू समन्या, सरला काकी को तुम्हारा वास्ता परोस भेजूं। बोली कि तौन वो मेज माँ धार दी। फूफू तेरे को खाने लगा दिया? रामू ने पूछी। अभी खाना खाणो जू नहीं बोलनू, मी बाद हम खेलियो लू। सुदर्शनी साफ झूठ बोलगी, जबकि वी की टक सुबेर बिटी दालिया पकड़ों पर लगी छे। ब्यो माँ खूब चखल पखल होली देबू? हाँ फूफू, समणी पुंगड़ा माँ बड़ो पंडाल लग्यूं। मोहन काकन भैर बिटी रसोईया और सजावट वाला बुलाया छन। सुदर्शनी ने एक नज़र परोस पर डाली और दूसरी अपना संदूक पर रखिया बटुआ माँ जख 200 रुपया को नोट वी चिड़ाणु छो। बगैर न्यूतु दिया वह खाणो खाण माँ ही चकनी छे। वी का जुकड़ा माँ ये को भारी बोझ छो। परोस बिटी खाणो बढ़िया खुशबू आनी छे। जरा देर माँ वो नौना बॉडी गेन। फूफू अजू तलक द्वार पर खड़ी वे की तो जान दिखनी छे। जरा दूर जाए की वो दुई फरकी गेन। फूफू में बिसर गयो, हम तो एक चीज चेणी छे। देवुन बोली, ये सुनी की सुदर्शनी खोलेगी, वी माँ ब्यो माँ देणो कुछ भी नहीं छो। बेटा मी माँ देणो कुछ नहीं, वी लाचार वे की बोली। फूफू बेदी का वास्ता फिर कवली केले डाली चेणी, गौ माँ कख नहीं मिली। ये सुनी की वीन चैन पड़ेगी, वीन बोली, कौरा पिछने एक डाली छेची, वी काटी लीजे लिया। वी डाली पर केले भारी भारी कु फिरका छो, वे में 7-8 दर्जन केला लग्या छा। बाजार मतों की कीमत कम से कम 400-500 रुपया रह होली। पिछने जय की नौ नौ केले डाले काटी और वे कंधा मचन कह की लिजाण लगीन। तो का जांदी फूफू को जियो हल्कु हैगी, न्यू तो नहीं देणो मलाल खत्म हैगी। और वह छठ थकला माँ परोस रखी की मजा माँ दाला पकौड़ा और स्वादि खाणो खाण लगी।
1: दीदी बहनियों अल्ले आपन सुनो पूर्व प्रसारित एक गढ़ कहानी न्यूतू जैक कहानीकार छी श्रीमती कुसुम नेतानी। आशा करनु कि यह कहानी आपके जरूर भल लागुनेल। तो दीदी बहनियों अब आपके ली जानू गढ़वाल का छोर और सुनोनू मोहन बधानी को गायो भलू भलिया गढ़वाली गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: दीदी पहनियो रे बार है मेरी पहली आपन सुनो मनमोहन बधानी को गायो भलो भल गढ़वाली गीत। आशा करनु कि यह गीत आप सब दीदी बहनियन के भल लागुनल। बहनियो आज बहु रोड़िक बखत छु जहाँ एक और बहुत एक गर्मी पड़ने जंगों में आग लगने वे हम देखनु कि पानी कमी ले हमन के सामना करन पड़नो। बहनियों कहना कहें येख लीजिए हम मन की ही तो जिम्मेदार छना किले कि हमून कतु डाउबोट काटेली। आज तो हमले हमन के थोड़ बहुत पानी कुं तालाब नौल गधेरों में देखने लीजिए मिलनो। पर बनियो अगर बखत ऋण हम जागरूक नहीं होने तो हमार आनवल जो पीढ़ी छू उनके जो पाण छू केवल बोतों में ही दिखल। यह लीजिए खूब डाउ बोट लगावा और कोशिश करिया कि आनवल दियो मौसम में अपू और बटी जतुले पेड़ हम लगा सकनू उतु पेड़ जरूर लगाया। जरूर नहीं नाते कि हम जगों में जाबेर ही डाउ बोटन के लगाऊं। हम अपू घर में ले एक शुरुआत कर सकनू नानन गमनों बटी ले कर सकनू यह शुरुआत। हम उनमें ले नानन पेड़ पौधा फूल लगा सकनू जहल की केहल प्रकृति के सुंदर बनाने में हमार थोड़ योगदान है जल। तो बहनियों जरूर डाउ बोट लगाया यहल के हल कि हमार पर्यावरण ले भल और हमार प्रकृति ले सुंदर लगेल। तो बहनियों अब आपके लिए जानू जौनसार का छोर और सुनो नू रेशमा साकू गायो यो भलू भल जौनसारी गीत।

0: दीदी बहनियों, अल्ले आपन सुनो रेशमा साको गायो भलो भल जौन सारी गीत, और आशा करनो कि यह गीत आपके जरूर भल लगुनल। तो दीदी बहनियों, आप हमन के कार्यक्रम आपके कैस लगूं, यह एक लीजिए चिट्ठी ले लिख सकता। हमारे चिट्ठी पत्र छो कार्यक्रम जनानो का वास्ता, द्वारा केन निदेशक आकाशवाणी केन देहरादून, निकट रिस्पना पुल और पिन छो 248001। दीदी बहनियों, आज बहुत चटक घाम लगनो, तो यह टाइम में आपन के अपू स्वास्थ्य ध्यान देने बहुत जरूरत छू। तो जब ले आप घर बटी भय निकलिया, पहले तो जब जरूरी हो तबे निकलिया, जब ले निकलिया तो अपू दगर छात और पानी बोतल जरूर ली जाया और अपू स्वास्थ्य ध्यान धरिया। तो बहनियों, आज एक जनानों का वास्ता कार्यक्रम ले बटोरनक मी कुसुम पिलाखवाल के आज्ञा दिया। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनानों का वास्ता, FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के

0: मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, राज्य सरकार वनाग्नि की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है और देहरादून जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाली जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलीकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए। उधम सिंह नगर जिले के नगर निगम रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा और

0: नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं से हुए संवाद में उनके भविष्य, शहर की व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों से भी खुलकर अपने सुझाव रखने को कहा। इस अवसर पर महापौर ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को निगम की तरफ से छात्रवृत्ति देने और शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की बात भी कही।
1: हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया। और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए। तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और के साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी, अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
0: वहीं छात्रा कशि सिंह ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की।
2: आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने। तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव्स देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार वनाग्नि रोकने के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है। इसके तहत नियमित कार्यबल बढ़ाने के साथ ही व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी के लगातार बढ़ते तापमान, लंबे समय पर सूखा, अनियमित मानसून, अल नीनो समेत अन्य कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की घटनाएं अधिक देखने को मिल रही हैं। वन मंत्री ने कहा कि वनाग्नि नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान, प्रचार प्रसार और नवाचारों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
4: वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में, और इस पे हमारा विभाग अपने रेगुलर वनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता पे हमने फोकस किया, और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे उनमें जिलाधिकारी, उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर के उनको 30,000 रुपए का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया।
0: देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के तहत जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसका लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज करवाने के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिंडियाल ने बताया कि देहरादून एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ निःशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि उम्र दराज लोगों और दिव्यांगजनों को अक्सर इलाज, फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र से जुड़े कागजी कामों के लिए समाज कल्याण विभाग और अन्य अस्पतालों के चक्कर काटने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग को चालक सहित इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।
5: अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल फोर व्हीलर दिया है विद ड्राइवर, और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांग जन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है, ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
0: TSDC इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान में निगम के सभी कार्यालयों, परियोजना स्थलों और इकाइयों में स्वच्छता और सतत विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में कॉरपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में कार्यपालक निदेशक नीरज वर्मा ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं ऋषिकेश के जानकी सेतु और त्रिवेणी घाट सहित कई सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत का संदेश दिया गया। अभियान के तहत टिहरी, झांसी, खुर्जा और अरुणाचल प्रदेश समेत विभिन्न परियोजना स्थलों पर स्वच्छता अभियान, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं, जन जागरूक रैलियां, कार्यशाला और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए। छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। TSDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सिपंग कुमार गर्ग ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 31 मई तक चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण, जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, राज्य सरकार वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है और देहरादून जिले के दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 MHz पर दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम पेइंग गेस्ट। संगीतकार हैं एसडी बर्मन और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कमलेश अवस्थी की आवाज़ में, फिल्म का नाम प्यासा सावन। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
5: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
6: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
5: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
6: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
5: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
6: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
5: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
3: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे

0: सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर

0: लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में

जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थीं और दिल डर से सहमे हुए थे। विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
4: मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
2: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर

भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह मौसम विभाग ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा अब समाचार विस्तार से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है एक रिपोर्ट
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है समाचार कक्ष से वैष्णवी
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम

0: मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन

0: आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। श्रोताओं, भारत की मिट्टी ने समय समय पर ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिनकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के उस जाबाज सैनिक की जिसने अपने साहस, कर्तव्य और बलिदान से इतिहास रच दिया, हवलदार हंगपन दादा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में हवलदार हंगपंग दादा की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1979 को अरुणाचल प्रदेश के बोरधुरिया गांव में हुआ था। पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच पले बड़े हंगपन बचपन से ही मेहनती, अनुशासित और निडर स्वभाव के थे। इसी के चलते उनके मन में भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने की इच्छा और मजबूत होती गई। कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो भारतीय सेना की असम रेजिमेंट में भर्ती हुए। सेना की कठिन ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता से सबका दिल जीत लिया।

श्रोताओं, हवलदार हंगपंग दादा ने भारतीय सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया। वो राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में भी तैनात रहे, जहां आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर साथियों की रक्षा की। मई 2016 जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में भारतीय सेना को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। हवलदार हंगपंग दादा अपनी टीम के साथ ऑपरेशन में शामिल हुए। घना जंगल, मुश्किल रास्ते और सामने छुपे हुए भारी हथियारों से लैस आतंकी, लेकिन हंगपंग दादा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बहादुरी से आतंकियों का सामना किया। करीबी मुठभेड़ में उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

श्रोताओं, 15 अगस्त सन 2016 को हवलदार हंगपंग दादा की अद्भुत बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान उनकी पत्नी को प्रदान किया गया।

श्रोताओं, हंगपंग दादा हमें सिखा गए कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने देश और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखे। कुछ लोग जीवन जीते हैं और कुछ लोग ऐसा इतिहास रच जाते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसी के साथ मैं आपकी उद्घोषिका आपसे विदा लेती हूँ। सैनिक साथियों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रविंद्र सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार वनाग्नि को रोकने के लिए नई रणनीतियों पर लगातार काम कर रही है। इसके तहत नियमित कार्यबल बढ़ाने के साथ ही व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले में BSNL नेटवर्क में आ रही परेशानी को देखते हुए BSNL के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर नेटवर्क व्यवस्था में प्रभावी सुधार करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पौड़ी जिले में विभिन्न बालिका और बालक छात्रावासों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य छात्रावासों में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना और उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देहरादून महानगर कांग्रेस की ओर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उधम सिंह नगर जिले के नगर निगम रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के भविष्य और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब सुनिए विशेष वार्ता, चाचा नेहरू का भारत दर्शन। वार्ताकार डॉक्टर दिनेश शर्मा।
2: आज की इस वार्ता में हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिन्हें भारत के बच्चे प्रेम से चाचा नेहरू कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, अपितु वे एक संवेदनशील सर्जक, मानवतावादी विचारक, आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा और प्रखर लेखक होने के साथ साथ बच्चों के सच्चे हितैषी भी थे। उनका जीवन पथ सर्वत्र कानून और राजनीति की पेचीदगियों से ओतप्रोत दृष्टिगोचर होता है, पर वैचारिक गहराई से देखने पर हम उनकी संवेदना में एक स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। उनके विचार राष्ट्र के इर्द गिर्द घूमते रहते थे और केंद्र में रहता था उज्ज्वल भविष्य उन नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिन्हें वे केवल स्नेह नहीं, अधिकार, शिक्षा और गरिमा देना चाहते थे। नेहरू जी के बाल प्रेम में भावुकता से आगे एक दार्शनिक दृष्टि अंतर्निहित थी। वे जानते थे कि आज के बच्चे सिर्फ आने वाले समय के सारथी ही नहीं हैं, वे वर्तमान के सबसे संवेदनशील घटक भी हैं। यदि उनके लिए स्नेह, सुरक्षा, शिक्षा और अवसर सुनिश्चित किए जा सकें तो वे देश को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिनका स्वप्न राष्ट्र निर्माताओं ने देखा था। वे बच्चों को राष्ट्र की वास्तविक पूंजी और भविष्य की सबसे बड़ी आशा मानते थे। उनका विश्वास था कि बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका वातावरण और उनके भीतर विकसित होने वाली वैज्ञानिक सोच ही देश के भविष्य की दिशा तय करेगी। यही कारण है कि वे उनसे सरल भाषा में बात करते थे, उनके प्रश्न सुनते थे, उनके मन की सहजता को महत्व देते थे और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सहभागी बनाते थे। बच्चों के लिए यह अनुभूति अत्यंत महत्वपूर्ण थी कि देश का सबसे बड़ा नेता उन्हें अपना समझता है, इसलिए वे बच्चों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए। वे बार बार इस बात पर बल देते थे कि आज के बच्चे ही कल का भारत हैं। शायद इसीलिए सन 1964 में उनके निधन के बाद उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ताकि बाल कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्थायी सम्मान दिया जा सके। भले ही चाचा नेहरू एक भारी भरकम मान पदवी नहीं है, लेकिन नेतृत्व के प्रति यह भाव भरा सरस संबोधन बच्चों के हृदय में उनके लिए बसे विश्वास और अपनत्व का जीवंत प्रमाण अवश्य है। आज उनका नाम लेते ही हमें उनकी सार्वजनिक छवि का अभिन्न अंग यानी पहनावा दिखाई देता है, जो उनकी सोच की तरह सादा, सुरुचिपूर्ण और अर्थपूर्ण था। वे प्रायः सफेद या हल्के रंग की अचकन, चूड़ीदार पाजामा और खादी की टोपी पहनते थे। उनके अचकन में सजे ताजे गुलाब को महज सज्जा की विषय वस्तु नहीं माना जा सकता है। यह उनकी दिवंगत पत्नी कमला नेहरू की स्मृति, उनके परस्पर प्रेम और जीवन के प्रति एक सौंदर्यपूर्ण दृष्टिकोण का भी बोध कराता है। उनकी पोशाक में भारतीयता की गरिमा थी और उनमें एक शालीन आधुनिकता समाहित थी। वस्तुतः बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी नेहरू राजनेता, बुद्धिजीवी, इतिहासकार और लेखक होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि के प्रबल पक्षधर थे। उनका मन जिज्ञासु था, उनकी दृष्टि व्यापक थी और उनका स्वभाव मानवतावादी था। महात्मा गांधी ने उनके व्यक्तित्व को क्रिस्टल की तरह शुद्ध बताया था। यह कथन कोरी प्रशंसा नहीं, उनकी नैतिक स्पष्टता और देश के प्रति समर्पण की पहचान थी। महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें यौवन, सृजन और विजयी ऊर्जा का प्रतीक कहा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन उनकी कृति द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अभिव्यक्त उनके गहन ऐतिहासिक चिंतन से अत्यंत प्रभावित थे। उनके युग के इन तीनों महापुरुषों की दृष्टि में नेहरू एक सफल राजनेता होने के साथ एक ऐसे विलक्षण मनीषी भी थे जिनकी संवेदना और बौद्धिकता दोनों एक साथ विराजमान थी। नेहरू की महत्वपूर्ण बौद्धिक कृति भारत की खोज को उन्होंने अहमदनगर किले की जेल से सन 1942 से 1945 के बीच लिखा था। यह पुस्तक इतिहास के विवरण से कहीं आगे भारत की आत्मा को समझने का एक गंभीर और भावपूर्ण प्रयास है, जिसमें नेहरू भारत के समृद्ध अतीत की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक प्रवृत्तियों, सामाजिक संरचनाओं और आधुनिक चेतना को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। पराधीनता की अवस्था में लिखी होने के बावजूद इसमें नैराश्य का भाव नहीं दिखता और कारागार का अंधकार भी नहीं झलकता, बल्कि इसमें पुनर्निर्माण की तीव्र उत्कंठा दिखती है और ज्ञान का प्रकाश आलोकित होता है। यह पुस्तक भारत के गौरवशाली अतीत की उन विविधताओं की और उसकी राष्ट्रीय पहचान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक तीनों दृष्टिकोणों से पड़ताल करती है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर भारत की आजादी तक के सफर को समेटे इस पुस्तक में वेदों, उपनिषदों, मौर्य और गुप्त साम्राज्य से लेकर मुगल काल और ब्रिटिश शासन तक का विस्तार से वर्णन है। आज के बच्चों को नेहरू के विचार जगत को समझने के लिए इस पुस्तक के कुछ उद्धरण अवश्य देखने चाहिए। भाषा के बारे में वह कहते हैं, एक भाषा व्याकरण और भाषा शास्त्र से कहीं अधिक होती है। वह किसी जाति और संस्कृति की काव्यात्मक साक्ष्य गाथा है तथा विचारों और कल्पनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति है जिन्होंने उसे रूप दिया है। यह उद्धरण भाषा को एक समुदाय का स्पंदन बताते हुए उसे सभ्यता के इतिहास और उसकी आत्मा की सामूहिक कल्पना का समुच्चय बताता है। दूसरा उद्धरण है, अतीत हमेशा हमारे साथ रहता है, इसे न समझना और इसे अपने भीतर एक जीवित शक्ति के रूप में महसूस न करना यानी वर्तमान को न समझने जैसा ही है। इसे वर्तमान के साथ जोड़ना और भविष्य तक विस्तारित करना, उसे विचार और कर्म के लिए स्पंदित सामग्री बनाना, यही जीवन है। यह उद्धरण नेहरू के इतिहास बोध की गहराई को प्रकट करता है और अतीत को वर्तमान से जोड़कर भविष्य की रचना के लिए प्रेरित करता है। अगला उद्धरण है, मनुष्य की भावना कितनी अद्भुत है, आपदाओं के बीच भी उसने अपनी गरिमा और उन मूल्यों में अपना विश्वास नहीं खोया है जिन्हें वह संजोता है। उसने प्राकृतिक शक्तियों को चुनौती दी है और अपने मस्तिष्क से जो क्रांति का पालना है उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया है। यह नेहरू की मानव विश्वास से भरे दृष्टि का सुंदर उदाहरण है। वे मानते थे कि मनुष्य विपत्तियों के बावजूद अपने अस्तित्व, गरिमा और आत्मविश्वास को बनाए रख सकता है। उनका एक कथन वैश्विक मानवतावाद का भी उदाहरण हैं। मानवता के सबसे अच्छे और उत्कृष्ट उपहार किसी विशेष जाति या देश का एकाधिकार नहीं हो सकते, इसका दायरा सीमित नहीं किया जा सकता और इसे किसी कृपण के भूमिगत दबे खजाने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। विज्ञान और श्रेष्ठ मानवीय उपलब्धियों को किसी एक देश, जाति या धर्म की बपौती नहीं मानते थे। उनके लिए ये पूरी मानवता एक साझी धरोहर थी। उनकी यह दृष्टि बच्चों में उदारता, सह अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करती है। बच्चों से बातचीत के दौरान नेहरू राष्ट्र की परिभाषा को भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठाकर मानवीय आधार पर स्थापित करते थे। उनके लिए भारत माता कोई केवल मूर्ति या मानचित्र नहीं, बल्कि वह जनता थी जो खेतों में, कारखानों में, विद्यालयों में और घरों में अपनी अपनी दिनचर्या में संलग्न थी। उनका यह व्यवहारिक दृष्टिकोण उनके राजनीतिक और शैक्षणिक कार्यों में भी दिखाई देता है। उन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को राष्ट्रीय विकास का आधार माना और उनके नेतृत्व में आधुनिक भारत के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी गई। इसके पीछे यही सोच थी कि भारत के युवाओं और बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जहां वे तर्क, विवेक और खोज की भावना से आगे बढ़ सकें। आज जब हम चाचा नेहरू को याद करते हैं तो हम केवल एक राजनीतिक नेता को नहीं, बल्कि एक ऐसी मानवीय चेतना का स्मरण करते हैं जिसने आजाद भारत के बच्चों में भविष्य का सपना देखा। उनकी वेशभूषा, उनका गुलाब, उनकी मुस्कान, उनकी पुस्तकें, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बच्चों के प्रति उनका अगाध प्रेम, ये सब मिलकर उन्हें एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व बनाते हैं। उनकी भारत की खोज हमें यह सिखाती है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, वह मनुष्य की गरिमा, शिक्षा, स्मृति और आशाओं से बनता है। कुल मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह चाचा स्वरूप उनकी दार्शनिक गहराई का ही एक विस्तार है और शायद इसी कारण आज भी बच्चों के मन में चाचा नेहरू जीवंत हैं, एक ऐसे स्नेहिल मार्गदर्शक के रूप में जो हर पीढ़ी से कह रहा है, सपने देखो, सीखो और अपने भारत को और अधिक उन्नत और अधिक सुंदर बनाओ।
0: अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता चाचा नेहरू का भारत दर्शन। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश शर्मा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:12 हुए हैं। अब सुनिए गाने नई तराने।

कुमार शानू की आवाज़ में ही गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था 1942, अ लव स्टोरी। संगीत निर्देशन था आर डी बर्मन का और गीतकार थे जावेद अख्तर। गाने नए तराने प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम आशिक बनाया आपने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 3:27 हुए हैं। आप सुन रहे हैं गाने नई तराने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में। फिल्म का नाम है अजहर। संगीत निर्देशन है प्रीतम और अमाल मलिक का।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर दोपहर के 3:33 हुए हैं आप सुन रहे हैं गाने नए तराने अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में फिल्म का नाम बार बार देखो

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दिल से। गीत को आवाज दी थी सुखविंदर सिंह और शमा अवस्थी ने। संगीत निर्देशन था यार रहमान का और गीतकार थे गुलजार। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आप सुन रहे हैं गाने नए तराने। अब सुनिए ये अगला गीत महालक्ष्मी अय्यर, हार्डकोर और जस्सी की आवाज में। फिल्म का नाम पटियाला हाउस। गीत के बोल लिखे हैं अन्विता दत्त ने और संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का।
1: दिस इज

FM 14.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:48 हुए हैं। आप सुन रहे हैं गाने नई तराने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार नदीम श्रवण। फिल्म का नाम है परदेस और गीत को आवाज दी है कुमार शानू ने।

गाने नए तराने प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परिणीता से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा और गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने।

0: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने, FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन व अनुसरण समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने और इसमें कमियां पाए जाने पर संबंधित जिलों को सूचित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में LPG गैस आपूर्ति व्यवस्था की जांच के लिए प्रवर्तन टीमों का औचक निरीक्षण अभियान जारी है। कोटद्वार, दुगड्डा और पौड़ी क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर करीब 27,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले में BSNL नेटवर्क में आ रही परेशानी को देखते हुए BSNL के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर नेटवर्क व्यवस्था में प्रभावी सुधार करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बागेश्वर में अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज बजूला में भारतीय भाषाओं पर आधारित समर कैंप का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को भारतीय भाषाओं, मातृभाषाओं, लोक संस्कृति और भाषाई समृद्धि से जोड़ते हुए उनमें संवाद कौशल, खोजी प्रवृत्ति तथा रचनात्मकता का विकास करना है। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येल्लो अलर्ट जारी किया है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 4:02 हुए हैं, आप सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे रघुनाथ बालकृष्ण सोलापुरकर का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मधुवंती। तबला पर संगत कर रहे हैं उद्दालक सामंत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सुनील मुखर्जी।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रघुनाथ बालकृष्ण सोलापुरकर का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मधुवंती। तबला पर संगत कर रहे थे उद्दालक सामंत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सुनील मुखर्जी। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम एक कलाकार।

श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम एक कलाकार में, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की किसी एक नामचीन हस्ती से। मैं हूं आपकी उद्घोषिका और आज हम लेकर आए हैं भारतीय सिनेमा के उस महान फिल्मकार की कहानी जिन्होंने भारतीय फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी। एक ऐसा निर्देशक जिसने गाँव की मिट्टी की खुशबू, माँ की ममता, किसान का संघर्ष और इंसानी भावनाओं को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। जी हाँ, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है महान फिल्म निर्देशक और निर्माता महबूब खां को।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म निर्देशक महबूब खान। 9 सितंबर 1907 को गुजरात के बलिमोरा में जन्मे महबूब खान। इनका असली नाम था रमजान खान। बचपन से ही उन्हें अभिनय और फिल्मी दुनिया आकर्षित करती थी और इसी के चलते वो युवावस्था में मुंबई चले आए, जहां उन्होंने संघर्षों से भरी जिंदगी शुरू की। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत उन्होंने छोटे छोटे कामों से की। कभी एक्स्ट्रा कलाकार बने तो कभी स्टूडियो में सहायक के रूप में काम किया, लेकिन उनके भीतर छिपा कलाकार और निर्देशक धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। 1935 में उन्हें पहली बार निर्देशन का अवसर मिला। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे फिल्मकार का सफर जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारे आज के एक कलाकार हैं फिल्म निर्देशक महबूब खान। 1940 के दशक में महबूब खान ने ऐसी फिल्में बनानी शुरू की जिनमें सामाजिक संदेश प्रमुख होता था। 1940 में आई उनकी फिल्म औरत उस दौर की बेहद प्रभावशाली फिल्म थी। ये कहानी थी एक भारतीय ग्रामीण महिला के संघर्ष की, गरीबी, समाज की कठिनाइयां और परिवार के लिए त्याग। इन सब भावनाओं को महबूब खान ने इतनी सच्चाई से प्रस्तुत किया कि दर्शक भावुक हो उठे। इसी फिल्म की कहानी को उन्होंने आगे चलकर भव्य रूप में मदर इंडिया के रूप में बनाया था। इसके बाद 1949 में आई फिल्म अंदाज ने हिंदी सिनेमा में नया इतिहास रच दिया। इस फिल्म की कहानी पहली बार दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस जैसे तीन महान कलाकार के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी। फिल्म आधुनिक रिश्तों और भावनात्मक उलझनों पर आधारित थी। उस समय इस तरह का विषय बिल्कुल नया माना गया।

कार्यक्रम एक कलाकार प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म निर्देशक महबूब खान।

महबूब खान केवल सामाजिक विषयों के निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि वो भारतीय सिनेमा की तकनीकी रूप से भी आगे ले जाना चाहते थे। 1952 में उन्होंने बनाई फिल्म आन। ये उस दौर की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म रंगीन तकनीक में बनाई गई और विदेशों में भी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सिनेमा भी बड़े स्तर की फिल्में बना सकता है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं महबूब खां के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि की। वर्ष 1957, भारतीय सिनेमा को मिली एक ऐसी फिल्म जिसे आज भी महानतम फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म का नाम मदर इंडिया। ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि भारतीय नारी की शक्ति, त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। फिल्म की मुख्य भूमिका में थी नरगिस। उन्होंने इस फिल्म में अपने किरदार को इतनी सच्चाई और भावनात्मक गहराई से निभाया कि ये चरित्र अमर हो गया।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं फिल्म निर्देशक महबूब खान। श्रोताओं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि मदर इंडिया को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। ये ऑस्कर पुरस्कार के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। महबूब खान न केवल फिल्में ही बल्कि बनाई, उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को मजबूत आधार भी दिया। उन्होंने मुंबई में महबूब स्टूडियो की स्थापना की, जो आज भी हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण स्टूडियो माना जाता है। कई प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई। आज भी फिल्म जगत में महबूब स्टूडियो का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 1962 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सन ऑफ इंडिया, जिसका एक गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

श्रोताओं, अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो वर्ष 1963 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। साथ ही इन्हें फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। श्रोताओं, आपको बता दें, मदर इंडिया ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई। 28 मई 1964 को महबूब खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी सोच और उनका सिनेमा आज भी जीवित है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज और संवेदनाओं की आवाज बना दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्देशक महबूब खां पर। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया।

0: गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में साय के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे समृद्धि विश्व की अंग्रेजी वार्ता, विषय रहेगा फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर कॉमन सिटीजन्स। विविध कलाकारों के स्वर में गाए भजन श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम राज्य दर्शन का समय रहेगा 7:50 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसके ठीक बाद यानी 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे इंदु भारती नवानी की वार्ता पुस्तकालय से डिजिटल पुस्तकालय तक। साय 7:00 कार्यक्रम कृषि जगत में आज किसान साथी सुनेंगे मुकेश अरोड़ा से विकास चमोली की बातचीत, विषय रहेगा बचत का महत्व। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे अपने पसंदीदा फिल्मी गीत कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कल सवेरे 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। पर्वतीय लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शरण संगीत में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे जौनसारी लोकगीत, कलाकार होंगे रतन सिंह जौनसारी। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9:05 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में कल आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी, रिश्तों को कैसे बनाती है खास। साय 4:00 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे सुबह 10:02 पर। प्रातः 11:00 कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में आप सुनेंगे अपनी पसंदीदा फिल्मी गीत। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:12 पर, दोपहर 1:15 पर, अपराह्न 3:02 पर, साय 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

हिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। हेलो, गुड इवनिंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो युववाणी, आपकी अपनी होस्ट सिमरन अग्रवाल के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और इस पकती धूप में अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि धूप इतनी है कि कितना भी पाउडर लगा लो पसीना तो आ ही जाएगा। क्यों, सही कह रही हो ना? और कहीं स्वेटिंग इतनी ना हो जाए दोस्तों कि आपके आसपास के लोग ही आपसे कह डालें, अरे भाई नहा के अभी आ रहे हो या यहीं नहाने का प्लान है। चलिए, ये मजाक तो यूं ही होता रहेगा, पर दोस्तों अपनी बॉडी को अंदर से हाइड्रेटेड करें ताकि धूप का असर आप पर बिल्कुल भी ना पड़ सके। दूसरा, आजकल सब घरों से बाहर निकल रहे हैं, पानी वाले पिकनिक स्पॉट्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा वेदर फॉरकास्टिंग भी देख कर चलें। आजकल हीट वेव्स भी चल रही हैं जिससे कई तरह की बीमारी भी हो रही है, और जब हम हीट वेव्स की चपेट में आ जाते हैं तो हम किसी न किसी बीमारी की भी चपेट में आ जाते हैं। और जब हम ऐसी हीट वेव से निकल के पानी वाली जगह पर जाते हैं तो हमारे को अक्सर सर दर्द या खांसी जुकाम भी होने लग जाता है, जिस वजह से हमारे बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, घूमने के साथ साथ अपना टाइम मैनेज भी करना है आपको, कहीं ज़्यादा घूमते घूमते आपके गोल्स ही कहीं गोल ना हो जाएं। चलिए, इस टॉपिक पर अभी हम बात करेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक फ्रॉम द मूवी जजमेंटल से, जिसको आवाज़ दी है नविंदर, लीसा मिश्रा और राजा कुमारी ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम युवानी सिमरन के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक ऑनेस्टली ना हर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और कंटेंट क्रिएटर, यहाँ तक कि घर पर रहने वाले लोगों के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट की जरूरी टिप्स। भाई इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो, आखिर बार समय की है। कभी नोटिस किया है, पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात में लगता है यार आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, और फिर गिल्ट, स्ट्रेस, डेडलाइंस और असाइनमेंट्स सब एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अब मान लो एक स्टूडेंट है, सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर रील्स देखता है, फिर बस 5 मिनट वाला दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और देखते ही देखते असाइनमेंट सबमिशन की रात आ जाती है। क्यों लग रहा है ना अपनी जैसी वाइब्स कि एकदम वैसी बोल रही हूँ जैसा आप अपने से रिलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी सिंपल बट पावरफुल टिप्स जो आपकी लाइफ को सीरियसली ऑर्गेनाइज बना सकती हैं। जी हाँ, पहली टिप है टू डू लिस्ट बनाओ। सुबह उठकर या रात में सोने से पहले अगले दिन के टास्क को लिखो, लेकिन 20 काम मत लिख लेना, बस 4-5 इंपॉर्टेंट काम ही लिखना। जब आप टास्क पूरा करके टिक करते हो ना, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल ही अलग होता है। एक बार करके देखो फिर बताना। दूसरा टिप है प्रायोरिटी को समझो। हर काम अर्जेंट नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे कल एग्जाम है और आप नोट्स छोड़कर रूम डेकोरेशन कर रहे हो, भाई प्रायोरिटीज कहाँ है? पहला इंपॉर्टेंट काम खत्म करो, फिर एंटरटेनमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो कहीं नहीं भागा जा रहा है, पर मेरे दोस्त एग्जाम भागे जा रहे हैं। टिप नंबर 3 है फोन को कंट्रोल करो। अब ये सबसे डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है मान सकती हूँ मैं। हम फोन चेक करने जाते हैं टाइम देखने के बहाने, और 40 मिनट्स बाद वही वीडियोस देखकर बाहर आ जाते हैं। स्टडी या वर्क टाइम में नोटिफिकेशंस को दोस्तों ऑफ कर दो, और हो सके तो खासकर उन एप्लीकेशन की आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो जिस पर आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। बिलीव मी, फोकस ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव होने लगेगा। टिप नंबर 4, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं नॉनस्टॉप काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ह्यूमन ब्रेन भी रिचार्ज चाहता है। 45-50 मिनट्स काम करो, फिर 10-12 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लो। उसमें अपने आप माइंड को रिफ्रेश करो, वॉक करो, पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करो। अरे भाई कुछ फिटनेस वाला काम भी तो करोगे, वरना बैठे बैठे ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे, फिर जाओगे जिम योगा। तो बेटर है अपने टाइम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बैलेंस रखें। और दूसरा टिप नंबर 5 है ना कहना भी सीखो। हर जगह अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। अगर आपका इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है और दोस्त बोल रहा है चलना बाहर कहीं घूमने चलते हैं, तो कभी कभी पोलाइटली नो बोलना भी सीखो। यही एक स्मार्टनेस वाली टिप है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का मतलब हो रोबोटिक लाइफ नहीं है, इसका मतलब है अपने सपनों के लिए सही टाइम निकालना। क्योंकि आज जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं ना, उनके पास भी सिर्फ 24 ही घंटे थे हमारी तरह। बस फर्क इतना था कि उन्होंने एक्सक्यूजेस कम और प्लानिंग ज्यादा करी है। तो दोस्तों आज से एक प्रॉमिस करो खुद से, टाइम वेस्ट कम, सेल्फ ग्रोथ ज्यादा। क्योंकि जब सेल्फ ग्रोथ होगी ना, तब आपको टाइम को यूटिलाइज करने में भी मजा आएगा। एक बार करके तो देखो। तो मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन, और बने रहिए शो के अंत तक, क्योंकि हमें और भी आपके साथ इन्फॉर्मेटिव बातें करनी है। और तब तक के लिए सुन लेते एक प्यारा सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी खामोशियां से, जिसको आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

क्योंकि आइडिया तो बहुत लोगों के पास होता है, कोई कैफे खोलना चाहता है, कोई क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहता है, तो कोई फोटोग्राफी स्टूडियो, तो कोई अपना खुद का स्टार्टअप। लेकिन फिर वही सवाल, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और कई बार तो लोग भी डरा देते हैं, भैया बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करके चलना, रिस्क फैक्टर्स को भी कैलकुलेट करके चलना। तो इससे क्या होता है, लोग पैसा लगाने से भी डरते हैं, और जिनके पास नहीं होता वही सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की जिसने लाखों युवाओं के सपनों को उड़ान दी है। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना। अब सबसे पहले आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि ये योजना है क्या आखिर में। पीएम मुद्रा योजना यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम के तहत छोटे बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना बड़ी गारंटी के लोन दिया जाता है। यानी अगर आपके पास टैलेंट और आइडिया है तो सरकार आपका सपोर्ट करना चाहती है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें लोन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला शिशु लोन, शुरुआत करने वालों के लिए। दूसरा किशोर लोन, बिजनेस बढ़ाने वालों के लिए। और तीसरा तरुण लोन, बड़े लेवल पर एक्सपेंड करने वालों के लिए। अब दोस्तों, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो देहरादून का एक स्टूडेंट है, उसको वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का बेहद शौक है, लेकिन कैमरा खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने पीएम मुद्रा योजना के थ्रू लोन लिया, कैमरा खरीदा, फ्रीलांसिंग काम शुरू किया, और आज वही लड़का वेडिंग शूट्स, रियल एडवर्टीजमेंट्स और कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टीम के साथ काम कर रहा है। इसी तरह कितने लोग छोटे फूड स्टॉल्स शुरू करके आज कैफे ओनर्स बन चुके हैं दोस्तों। ये स्कीम सिर्फ एक लोन नहीं देती, ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये वाली कुछ वाइब्स आने लग जाती है जब हमें स्कीम के बारे में हमें पता चलता है। अच्छा दोस्तों, इसमें हम जान लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट, यंग एंटरप्रेन्योर, स्मॉल शॉप ऑनर्स, फ्रीलांसर्स, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर स्टार्टअप्स वाले। यानी अगर आपके पास स्किल है तो चांसेस आपके पास भी हैं दोस्तों। बस सबसे ज़रूरी बात यह है, बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। आज का यूथ सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं चाहता, वो जॉब्स भी क्रिएट करना चाहता है। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसे सिर्फ नोटबुक तक मत रखिए, रिसर्च कीजिए, प्लानिंग कीजिए और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। क्योंकि हो सकता है कि आज आपका छोटा आइडिया ही कल आपका बड़ा ब्रांड बन जाए, और खुशी भी होगी जब आपका एक छोटा सा आइडिया एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा, आप दूसरों के एक आइडल भी बन जाएंगे। क्योंकि मंजिल दोस्तों उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। गौर फरमाइएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखिए, ड्रीम्स तभी सच होते हैं जब उन्हें एक्शन मिलता है। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक गुरु रंधावा की आवाज में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: दोस्तों, बात करेंगे उन युवाओं के लिए जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस कभी कभी साथ नहीं देते। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। किसी को जॉब करनी पड़ती है तो किसी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, तो कोई फाइनेंशियली रेगुलर कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन गुड न्यूज़ है दोस्तों उनके लिए, अब सपनों की पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रही है। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटी की। अब इमेजिन करो, एक लड़की है, उसका सपना था ग्रेजुएशन करना लेकिन फैमिली कंडीशंस की वजह से उसे जॉब करनी पड़ी। सुबह ऑफिस, शाम को घर का काम, रेगुलर कॉलेज इम्पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर उसने ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया, वीकेंड में क्लासेस अटेंड करी, ऑनलाइन नोट्स पढ़े और आज वही लड़की अपनी डिग्री को कंप्लीट करके प्रमोशन भी पा चुकी है। यही तो पावर है डिस्टेंस एजुकेशन की दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन आखिर है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ऐसी पढ़ाई जहां आपको रोज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती, अपने घर से अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। और ओपन यूनिवर्सिटीज जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू या फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आज लाखों स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल एजुकेशन दे रही है। अब कुछ लोग सोचते हैं डिस्टेंस लर्निंग मतलब ईजी डिग्री, लेकिन ऑनेस्टली इसमें डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी रेगुलर कॉलेज से भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ टीचर रोज आपके पीछे नहीं पड़ता और आपको कोई ट्यूटर भी नहीं मिलता। ऐसे आपको बहुत ही इरेगुलर बेसिस पे ट्यूटर मिलते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2 बार, जहाँ आपको खुद अपने सपनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। डिस्टेंस एजुकेशन किन लोगों के लिए है ये भी जान लेते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स के लिए, स्किल लर्नर्स के लिए और दोज हु वांट टू स्टडी वाइल अर्निंग, वो लोग जो कि कमाई के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि अब ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और डिजिटल नोट्स ने लर्निंग को और भी आसान बना दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, डिग्री चाहे रेगुलर हो या डिस्टेंस, सक्सेस आपकी मेहनत डिसाइड करती है। आज कितने सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने ओपन लर्निंग से पढ़ाई करके करियर बनाया है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई फिक्स्ड क्लासरूम। अगर किसी वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई है दोस्तों, तो उसे ख़त्म मत समझिए, क्योंकि एजुकेशन का रास्ता आज पहले से कहीं ज़्यादा ओपन है। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीव और डेडिकेशन की। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज जाना नहीं दोस्तों, बल्कि सीखते रहना होता है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक सुन लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक फ्रॉम जिसको आवाज दी है अरिजीत सिंह ने और पलक मुच्छल ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: दोस्तों समय हो गया है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले आपको हमारा एड्रेस लिखना होगा क्योंकि आपको हमें बताना है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा एड्रेस है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून बाईपास रोड नियर रिस्पना पुल। हमारा दोस्तों पिन कोड है 248001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं youthddn@gmail.com पर। साथ ही दोस्तों आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं 7088000731। इसी के साथ मुझे यानी सिमरन अग्रवाल को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनदरा सभी भाईबंधो ते विनय ध्यानिक छोड़ बटे की नमस्कार सेवा सोमी
1: दगड़ मां गीता भंडारी तरफ बटे भी नमस्कार पहला प्रणाम और ध्यानी जो आपको ले नमस्कार
0: नमस्कार आप तह दुया हाथ जोड़ी की किले के अब ये बात हाथ जोड़न बहुत जरूरी हो गया अब आप बोल किले
1: जी वैसे मैं समझने लाग रही ध्यानी जी आपके सारा
0: क्या
1: किले की एक तरफ तो खूब चटकता हो घाम पड़ रहा दूसरी तरफ यो जंगल खूब फुकेड़ी तो हम हाथ जोड़ी सकनो अफुकुले अपुर सुरता हो किले
0: वो बेचार दो बात यह कि वो पसीना हो जानो न तो अब हाथ पूंजन पूंजन अफिर एक हाथ अल दूसरा हाथ पूंजना है तो नमस्कार भी हाथ जोड़ी हुए जाला।

0: तो ये मौसम में आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मौसम तो बहुत ठंड जो है और इधर सुंदर यक्त बांझ बुरांस की और काफलों की बात हूँ है ना।
1: जी
0: और हम जब बिगाड़ गदेरों की बात कर देते हैं लगत की एक छपाक हमन भी मैरियाल। तो यो जो कार्यक्रम ग्राम जगत एक सवाल हो रही आपसे पूछना गीता जी
1: जी
0: कि जो स्कूल या दिन हुए ना हमारा
1: हाँ
0: उकमा सबसे भलु क्षण क्या जी?
1: उछातकरण, मास्टर को तंग करण और स्कूल बटी लुकबे घर जान और गजरा में छपा छप जो कर जी
0: हाँ,
1: ना
0: पर ई काम तो कुछ ही बच्चा कर देना
1: हाँ
0: सभी तो अक्सर नहीं होता लेकिन एक पल एक क्षण सभी विद्यार्थियों का खातिर एक ही जन को जो छुट्टी है
1: अच्छा
0: ना। आप ही देखा कि सुबेर जान जान ना ना ठलन पड़ दिन बच्चा या कोई सेक जानू ची कोई खेर खैक जानू ची कहता ये बात एक चिंता कि काम गुरुजन दिया छर कारु नीचे डर है
1: जी
0: तो जानदा तस्वीर कुछ और देखा है जीव घंटे छुट्टी लगे आ गजब कना जने नो फाल मैर मैर के तो सबसे सुंदर क्षण मिथ लगद एक ही अपन यूनिफॉर्म मा बच्चा अंदेन और बहुत उत्साह का दगड़ी जय रास्ता था कुर्चित कुर्चित हूं था 1 घंटा लगद न हुए था लौट दा वो 15 मिनट हम पूर कर देने।
1: जी सही कोई ध्यानी जी आप है। लेकिन ध्यानी जी अब जो चुना ना हमारे नानथिन जो विद्यार्थी छिन उनर तो सूरत बदल गए, वो हम भली के भेजन उनको स्कूल और उन्हों से ज्यादा हमों को इंतजार हो
0: हाँ
1: है ना कि
0: बिल्कुल।
1: हमारे नानथिन दिन में के करो हुनल कशी करो हुनल।
0: तो अब इन चुके हम ये बोल सकते हैं कि साहब हमारा जितना भी स्कूल है उन्होंने एक सख्त छुट्टी को भी हुए क्या हिसाब किताब कि लगे अब स्कूल लंबा समय का खातिर अब
1: जी
0: छुट्टी हो जाए और कतक कतक हुए भी गिन ना।
1: बहुत जल्दी है गई छुट्टी कदुगा खुलन वाले छीन स्कूल।
0: हाँ बस जुलाई अंदर वैसे पहले और अलग अलग से हमारे पहाड़ में हमने बोली नहीं कि बहुत सारा पर्वतीय इलाका इना छे जबकि ये दौरान छुट्टी नहीं हुई बल्कि यूंद में छुट्टी हुई देन
1: जी
0: तो बच्चों तो देखो कि सारा बच्चा छुट्टी मनाना चाहे और वो बस तथा में फिर भी जन है ना लेंसडाउन की बात कर लियो पौड़ी की बात कर लियो या और जगह जग जग ठंडा छन
1: जी
0: तो साहब ही हमारे स्कूलों की छुई बच्चे और आप सभी लोग अपन छुट्टियों को आनंद लेला इन हम उम्मीद करना पर भिंडी आनंद बिना है समय को सदुपयोग करा और अपन यूं गर्मियों की छुट्टियों थे यादगार बनाओ।
1: बिल्कुल सही कहो ध्यानी जी, यादगार बढ़ाओ। और छुट्टियों में हम नानथीना का इस बाजू से भी एक अनुरोध कर सकनो कि आप अपन नानथीना को लेवे देश विदेश परदेश तो जाते ही रहनो पर अपू घर जरूर ले जाओ इन छुट्टियों में
0: जी जी
1: है ना। तो घर में उनको गार्ड ले देखल, गदर ले देखल, डाल बोट ले देखल और सबसे बड़ी बात आजकल काफल ले देखल
0: हाँ
1: है।
0: काफल पक्या चिन साहब
1: हाँ
0: और सुंदर भी लगनो चाहे हालांकि लोग बाघ अर्री का डायरेक्ट नहीं जाना
1: हाँ
0: कि लगे ये बात आतंक हुई हो साहब है ना रिख और बाघ को लेकिन भारे अगर काफल खाना कुछ जाना चाहो तो कट्ठा हुए जाओ
1: जी
0: 5 6 लोग जाओ दियर कट्ठा रहन है ना। आप अकेला अकेला की दैन सुंदर में चाहिए कोई नहीं अंदर मी खा दिन सरा उन भी नहीं करो कि लगे जंगली जानवरों से हम तो सुरक्षित भी रहे।
1: ध्यानी जी एक बात मैं आपको कौन जानू कि जानवरों से ज्यादा तो आजकल महसू की डर है रे किले आजकल उन्होंने जंगल में खूब आग डाली है।
0: हाँ वो बात भी बहुत तो चिंता की बात है कि पता चलना हम काफल डाल में छुआ
1: हाँ
0: धुआं रुएल में देखना कि कक भटे कर तब रही आग ताल भटे का आनी चे
1: जी
0: अपन ध्यान रखा और जो जंगलक आग चे हुए था रोकण में भी मदद करा विभाग था समय पर सूचित कर दिया कि साहब जंगल चे ब्याल बटे फूकेणो तुम कक छो आ लियो दीप बचा लियो जंगल
1: जी
0: और यह सूचना के लेके स्थानीय लोग जो भी छे उनका सबसे पहले पता चल जाए तो यू फर्ज भी आप के बनत कि आप बगत पर उठा सूचित करा और हम भी सूचित करना चाहूँ आपते कि हमारे छुई बत्ती नहीं छीन आज कार्यक्रम में बल्कि एक वार्ता भी छु कार्यक्रम में श्रीमती इंदु भारती नवानी की और वार्ता को विषय छु पुस्तकालय से डिजिटल पुस्तकालय तक सारा दुनिया बदलने छ
1: जी
0: कंप्यूटर बदल गिन कंप्यूटर दगड़ तकनीक बदल गया वो का दगड़ ही हमारा पुस्तकालय भी बदल गिन पहले तो किताबों का चट्टा रहना छा
1: जी
0: और दूर दूर कखी कखी भी अगर आप ही देखा तो एक पुस्तकालय में जहां बहुत लंबा क्षेत्र में एक होना चाहिए।
1: हाँ और वहीं हम सब

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड गिव अप ऑन योर ड्रीम ऑफ जॉइनिंग उत्तराखंड्स हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी। अवेल 25% डोमिसाइल स्कॉलरशिप एंड जॉइन UPES। एप्लीकेशंस क्लोज 30th मई। टू स्टार्ट योर UPES जर्नी अप्लाई नाउ एट upes.ac.in।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत और रैवारों के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं को बोली भाषा के ये कार्यक्रम ग्राम जगत मा।
4: और जन के मन बता आप था शुरुआत में ही कि आज कार्यक्रम में एक वार्ता आपक खातिर छे छुई बात तो हम लगाना ही रोला, लेकिन अब जो बातचीत छे वो पुस्तकालय पर छे और आप टक लगा के सुन यह वार्ता जग विषय छे पुस्तकालय से डिजिटल पुस्तकालय तक। और वार्ता प्रस्तुत करने छे न श्रीमती इंदु भारती नवानी।
5: पहली पहाड़ मा शिक्षा को विकास मा बहुत धीमी गति छे। जब शिक्षा को विकास ही धीमा छे तब पुस्तकालय को अस्तित्व भी नहीं छे। किले की पहाड़ मा शिक्षा और स्वास्थ्य को अभाव का वजह से लोग शहरों मा शिक्षा ग्रहण कर दा छे। आर्थिक तंगी की वजह से भी पहाड़ मा विकास की गति धीमी रहे। 19वीं शताब्दी मा ब्रिटिश शासन को आने के बाद पहाड़ का शहरों मा छोटा छोटा पुस्तकालय स्थापित करे गए। स्वतंत्रता का बाद भारत सरकार राज्य सरकार पुस्तकालय बनाना खून जिला और तहसील स्तर पर पुस्तकालय खोली। पहाड़ में पुस्तकालयों का विकास उच्च शिक्षा का माध्यम से शुरू हुए। विशेष रूप से गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय जन उच्च शिक्षा संस्थानों में पुस्तकालय को निर्माण शुरू हुए। ये संदर्भ में 1997 में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पीली प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत हुई। गौरतलब छे कि पुस्तकालय को विकास उत्तराखंड में बहुत देर से शुरू हुए। यू तो उत्तराखंड की बात छे, अब हम चल दो भारत में पुस्तकालयों को विकास की तरफ। ज्ञान उच्च शिक्षा और धरोहर बचाण में भारत को इतिहास बहुत समृद्ध छे। पत्तु छालों और ताम परत पर लिखे गए ग्रंथों ज्ञान आज कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लिक मिलन वाल डिजिटल डाटा तक को सफर तकनीकी विकास ही नहीं दिखेंदू बल्कि हमर

0: पढ़ना लिखना का तरीका मा बड़ा बदलाव की कहानी भी छ। यू जनन गण हम पारंपरिक पुस्तकालयों तक चल दो, जबरी पुस्तकालय भोजपत्र ताड़पत्र और हाथ से लिखिया पांडुलिपि संग्रह पर आधारित छ। तबरी गुरुकुल परंपरा मा पुस्तकालय सरस्वती खाना या पोती खाना का रूप में विकसित हुए। वे कपात राजा महाराजा को शाही जीवन का हिस्सा बनी। उबरी शाही और राजशाही परंपरा में पुस्तकालय स्टेटस सिंबल का रूप में विकसित हुए। तबरी आम जनता को पुस्तकालय तक पहुंच नीच है। समाज में वैदिक शिक्षा को प्रचार प्रसार का वास्ता गुप्त वंश को सम्राट कुमार गुप्तल नालंदा विश्वविद्यालय मा धर्मगंज नामक पुस्तकालय स्थापित करी। वे का बाद कालांतर मा राजा हर्षवर्धन राजा देवपाल और राजा धर्मपाल को प्रयास से नालंदा पुस्तकालय दुनिया को सबसे बड़ो शान को केंद्र बन गए। नालंदा की बात होनी च तो तक्षशिला कन के अछूतु रह जालू। तक्षशिला विश्वविद्यालय को पुस्तकालय स्थापित करने वाला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य छ। ये दौर मा भारत की ज्ञान परंपरा और गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय विश्व मा अपनी गाथा लिखनु छ। वैदिक शिक्षा दर्शन बौद्ध धर्म गणित विषयों पर अध्ययन का वास्ता विदेशी छात्रों को आन जान रहंदा छ। दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमण कार्य श्वेत हुणुल तक्षशिला और बख्तियार खिलजिल नालंदा था नष्ट करना गुण आग लगा दियाई। बोलदा छन नालंदा को पुस्तकालय 3 महीने तक आग में जलनु रहे। वे मा इतगा संग्रहण छ कि अग्निल शने शने सभ्य लिखित साक्ष्य खत्म कर दियाई। ई गौरवशाली परंपरा और इतिहास था पुनर्जीवित करना वास्ता नालंदा पुस्तकालय शोध एवं अनुसंधान केंद्र लेखक गांव मा भारत का पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा 25 दिसंबर 2024 मा भारत का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष का दिन स्थापित करी। पारंपरिक पुस्तकालयों का स्वरूप मा हुई क्रांति इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का आना का बाद पुस्तकालय को पूरा ढांचा बदल गया। पुस्तकालय नवे स्वरूप डिजिटल रूप में बदल गया। डिजिटल लाइब्रेरी को सुविधा मतलब चक ज्ञान भौतिक स्वरूप मनी हुए कर डिजिटल फॉर्मेट यानी पीडीएफ ई बुक्स ऑडियो वीडियो में सुरक्षित रहेंदु। एक डिजिटल किताब या शोध पत्र में दुनिया भर का लोग डिजिटल पुस्तकालय का माध्यम से एक ही दगड़ी एक ही टाइम पर किताब पढ़ सकद। पूरी किताब था पलटने के बजाय आप एक कीवर्ड टाइप करे अपनी जानकारी कुछ सेकंड में ढूंढ सकदन। भारत सरकार ले मुख्य डिजिटल प्रयास का अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करी। ये पुस्तकालय आईआईटी खड़गपुर द्वारा बनेगी। यू एक विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो जय मां स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा तक करोड़ों संसाधन ई बुक्स वीडियो लेक्चर मुफ्त में उपलब्ध छ। ये संदर्भ में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यू भारत को खास प्रयास जैका तहत हमारी पारंपरिक आयुर्वेदिक यूनानी जैसी चिकित्सा प्रणाली को ज्ञान था डिजिटल रूप में सुरक्षित करी गये ताकि कोई और देश मा या कंपनी इमा अपड़ो गलत पेटेंट न करा सके। शोध गंगा जो की UGC को इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क द्वारा भारत का विश्वविद्यालय में जमा होने वाली सभी PhD थीसिस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करे जान जैसे शोधकर्ताओं था शोध विषय में मदद मिल दी। डिजिटल पुस्तकालय का संदर्भ में ई ज्ञान कोश यून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को डिजिटल प्लेटफॉर्म च जक ई संसाधनों को वृद्ध श्रृंखला ऑनलाइन उपलब्ध च और डिजिटल अवधारणा को आधार पर भारत सरकार को शिक्षा मंत्रालय को अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट और डिजिटल पुस्तकालय जेकू मुख्य उद्देश्य पुस्तक संस्कृति थे बढ़ावा देनु और मन क्यों तक भली किताब पहुंचाणु च। NBT को डिजिटल पुस्तकालय भारत को विभिन्न भाषा में प्रकाशित किताबों को प्रकाशन में ध्यान देंदु। यू की डिजिटल लाइब्रेरी में गढ़वली कुमाऊनी क्षेत्रीय भाषा में सामग्री भी उपलब्ध छ। पारंपरिक बटे डिजिटल पुस्तकालय तक को बदलाव समय की मांग छ। डिजिटल लाइब्रेरी न ज्ञान को लोकतांत्रिकरण करी बल्कि ज्ञान थे सबों तक सुलभ कराए दी। भले ही ये को मतलब यू नीचे की पारंपरिक पुस्तकालय खत्म हुएगी बल्कि आज को दौर हाइब्रिड लाइब्रेरी को छ। आज का समय में उत्तराखंड में पुस्तकालय को हाइब्रिड मोड देखना कुण आप तून रिसर्च लाइब्रेरी सेंटर को भ्रमण कर सकदा। यक उत्तराखंड को इतिहास संस्कृति परंपरा व शोध ग्रंथों को बड़ो संग्रह छ। आज देहरादून जो कि शिक्षा को हब छ। ये संदर्भ में आप सभी था यह बताना भी खुशी की बात छ कि आज पुस्तकालयों को हाइब्रिड मोड देखना कर्ण मिल जालू। ये माँ दून विश्वविद्यालय को पुस्तकालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज का पुस्तकालय, DIT यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी और तमाम बड़े विश्वविद्यालयों माँ हाइब्रिड व डिजिटल पुस्तकालय सेवा मिलनी चा। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को कोर्स भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बीलिप और एमलिप, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, स्पर्श हिमालय यूनिवर्सिटी, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी में संचालित होनु चा। जन उत्तराखंड में पुस्तकालयों को विकास नगण्य छ। वे का बाद भी कम भगत में पुस्तकालयों को विकास हुए गयी और शिक्षा और शोध को बड़ो गण बन गयी।
1: श्रोताओं अल्ले आपेल सुन गढ़वाली वार्ता पुस्तकालय से डिजिटल पुस्तकालय तक और वार्ता प्रस्तुत करनी छी श्रीमती इंदु भारती नवानी।
2: तो श्रोता भयबंधो और खासकर हमारा विद्यार्थियों के लगे आज बातचीत विद्यार्थियों से शुरू हुई है और जितना भी शोधार्थी छे वो समझना छे ना हाँ कि आज जो पुस्तकालय को स्वरूप छ वो बदल गया। रुकमा हम ई लाइब्रेरी की बात करण बैठ गए वहाँ और बहुत कुछ नए स्वरूप में हमारे समझ में छे। लेकिन हाँ इतना अथाह ज्ञान च और वो एक संग्रहण च वो एक कोश च कि आप जब तक भी बोग सक दिन बोग जाओ समुद्र च समुद्र है ना। लेकिन बस हाँ पढ़ने वाला तो हूं चंदन और जो बात में कहना चाहे ना कि देखा जब जब नई तकनीक नई सुविधाएं हमारे दगड़ जुड़ दिन तो कुछ चीज पैथर भी हट जान
1: जी।
2: आप ही देखा कि एक पुस्तक था ढूंढण मा जो आनंद छा ना
1: हाँ।
2: वो अब एक धया फार गूगल बाड़ा था लगा देना तो सब यो लो यो यो लो यो यो लो यो कह देनो पर मजा नहीं आना
1: ना।
2: लेकिन अब वो अगर उन बोल दिया हमारा जो पुस्तकालय अध्यक्ष छन करे नहीं वख ना वख छो वख किताब तम चाहे वो स्टूल लगा कि मेज लगा चढ़ गयो लेकिन वही किताब अब हूं क्या छा पता एक किताब दगड़ जब है किताब भी दगड़ छा ना तो वो एक तरफ भी मन चल जान छा यार ये किताब भी पढ़न भाई मैं
1: बिल्कुल सही कहो ध्यानी जी। और जब हम एक पाठ को पढ़ जी ना तो वही दिगड़ी हमको कद के और पाठ ले दिखे जा और कद को यह शब्द हम दिमाग में जुड़ जा और हमारे एक अपने आप में एक शब्द कोश तैयार हो जा ना
2: बिल्कुल।
1: लेकिन अब कुनी ना की जो चीज बहुत आसानी से मिल जा वो चीज अब फिर हम कदर नहीं करनो ठीक उसी जैसे हम सोचन कि किताब के लिए लो छो हमारे फोन में छो किताब और आजकल जो नानथिन थी ना उन्होंने जीत में तो भल नहीं माननी
2: इंचन के जो जो कह रही कि अब तो इतना ही ना पहले तो छा फार गूगल बाड़ा ही छा ना। लेकिन अब तो ये देखो कि AI भी चलनु चु और इन हिसाब किताब हो गया कि दिमाग पर जोर नहीं दे यू भी तू ही कर ले यू तू ही कर ले और मैं कुछ नहीं करना
1: जी।
2: तो फिर आपक दिमाग जो कसरत च जो आपक सृजनशीलता च
1: जी
2: वो तो खत्म हो गया।
1: बिल्कुल सही बात हमारे जो नानथिन जिन्हें ध्यान लीजिए उन्हें तर्क क्षमता भी कुछ नहीं रहेगी क्योंकि वो तो दूसरों के दिमागों का इस्तेमाल करनी और अगर उनको हम एक दूसरे को पर्याय ले पूछनो तो उनको पर्याय लग पतला उनको यह असल पतला कि पर्यायवाची छू के बस जादू बता है वही सच छू ना लीजिए। और जो हम देखणी के लिए कि अब हमले नानथिना के इस बावजूद चिंता हमको दिखेणो कि नानथिना में के कमी छू वो के करने की बस इदू गए ही पढ़ण छू ये साइकिल नहीं पढ़ण छू किले की यो आले ना तो यो एक तरफ से गलत छू ध्यान जी किले की अलवीर नियाल अखिलवार आल अखिल नियाल अखिल आल कभी ना कभी तो आल
2: पढ़ू लिखू कभी भी बेकार न जान कोई चीज कब आपक काम आ जा। लेकिन आज हम बिंदी बचाना छू और हमारा खास कर विद्यार्थी बोला लद्दरे उना स्कूल बंद हुए तुम्हारे स्कूल चालू है तो इन कर रहा है गीत अपना बेबंदो तो सुना फिर लगाना छू
1: जी। अब श्रोताओं को कुमाऊं के बाद गढ़वाल को ले जानू और फिर एक पुराण गीत उनको सुनानू पूनम सती की आवाज में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ,
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: रेबार का दगड़ी पूनम सती को गयू गीत आपन सुन और हम फिर आपक दगड़ छुई लगाना छुआ। जब हम नई तकनीक का दगड़ जुड़ना छुआ बना छुआ ई बात है तो वक्त हम तो यू भी हूं की भावना तो निच न हुए AI मा।
8: बिल्कुल ना।
7: है ना, अगर नेगी जी का गीत सुनना छुआ हम या कोई पुराना और भी हमारा जो पुराना गीत जन के अभी यू सुन।
8: हाँ।
7: AI तो बोलो की एक सास एक बार इन हूं लेख एक गीत वो रसायण आये।
8: बिल्कुल नहीं आये। और जद रसायण आने की बारील सास को सुनाए।
7: हाँ, किला की वो मानवीय रिश्तों तक नहीं जानना चाहे ना, वो भावनाओं तक नहीं पढ़ना चाहे, वो खुण तो बस शून्य बटकर एक योच हिसाब किताब वो खमी बोल देने वाले जगह ना। हम गायक भी बन जाना चाहूँ साहब के लिए भाई ये उच गीत तो ये तो गाय दी जरा। तो कुल मिला कि हमारी जो अपनी रचनात्मकता चु भावनात्मकता चु और सृजनशीलता चु वो अब धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म हो जा और तब वही से यू हो लू की हम सब आदम भी मशीन इतनी बन जो लग के आदम
8: क्या पता सर। ध्यानी जी हम रूल है निर्मूल तब तक पर आने वाली पीढ़ी रहे।
7: हाँ,
8: है ना,
7: बनती गिन रोबोट।
8: हाँ, बन
7: है ना। तो यूं छु बतो माँ भाई बंदो आप भी शामिल छे ना हमारे दगड़, अगर छे छे तो हुंगरा पूरे आओ दी चिट्ठी लिखो दी के लेके आज बुआरा दिन छो और भोल भी प्यारा दिन छो।
8: चिट्ठी gramjagat@gmail.com यो छो हमारे ननु नन पत्र। और ध्यानी जी मैं अल्ले यही सोच रही थी कि आज हम रोबोट की बात करने हम लगी रोबोट एक चारों बड़ बड़ बड़ बड़ लाग रही हूँ।
7: तब इनकर दा जौन सारी गीत कार्यक्रम में शामिल कर दा और वो एक बात देख ला अगर छु लगाना बगत हो राल तो पट्ट लगाऊंगा भाई
8: जी।
7: तो ये बत को गीत सुनाना अपन
8: अब सुड़े दिनों जौनसारी गीत रेशमा शाह की आवाज में।

0: गीतक बाद एक बार फिर से स्वागत छ आप सभी श्रोताओं को अपुर बोली भाषा के कार्यक्रम ग्राम जगत मा।
1: और जब हम बोली भाषा की बात करदा तो सीधी सी बात यह कि हम क्या सचेक में अपने बोली भाषा का खातिर चिंतित छुआ, बात करना छुआ, बचाना छुआ आपस में कि ना, ये हम तो सोचण होलो। केला कि कखी न कखी हम तो यू लगत कि न भय, हम सिर्फ बना खुण बना छुआ कि हाँ हमारी बोली भाषा, लेकिन ना वही माँ कोई काम होणु च, और घर में भी नहीं बचाना, तो स्कूल में भी नहीं बचाना, तो कन के

0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को अल्मोड़ा में सम्मानित किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पीएम पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन व अनुसरण समिति की बैठक ली। विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड्स समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य का संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के समन्वय के साथ कार्य कर रही है, ताकि विकास की गति भी बनी रहे और प्रकृति का संतुलन भी सुरक्षित रहे।
4: जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है, और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्यटक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश भर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिला सांस्कृतिक

0: ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से जिलावासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसके अलावा श्री जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य के लिए घेरबाड़ के लिए घोषित 90 करोड़ रुपए की धनराशि के क्रम में पहली किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए शीघ्र राज्य को उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के तहत कुंभ क्षेत्र को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की जा रही हरित हरिद्वार पहल को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में मेला नियंत्रण भवन में इसकी तैयारियों को लेकर अभियान के नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 45 गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि हर व्यक्ति इस अभियान से जुड़ाव महसूस करे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा।
1: बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको, ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान आपका, पहल आपकी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, जहाँ भी आप पौधे लगाना चाहें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके लोग इसमें प्रतिभाग करें। इसके लिए 2 डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरित हरिद्वार की जो हमारा मिशन है, हमारी जो पहल है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन व अनुसरण समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने और इसमें कमियां पाए जाने पर संबंधित जिलों को सूचित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार किया जाए। बच्चों के स्वास्थ्य की जांच पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को एनीमिया आदि से पीड़ित बच्चों का उपचार सहित लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का स्थान विशेष विश्लेषण भी किया जाए, जिससे यह भी पता चल सके कि किस जिले या किस ब्लॉक के बच्चे की किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ताकि उन क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें। बैठक में सचिव रविनाथ रमन ने पीएम पोषण योजना की वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार को प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना और बजट की समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। बागेश्वर के अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज वजूला में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का आज शुभारंभ हुआ। पहले दिन छात्र छात्राओं को कुमाऊनी भाषा के ऐसे क्लिष्ट और विलुप्त प्राय शब्दों की जानकारी दी गई जिसका प्रयोग वर्तमान समय में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साथ ही हिंदी शब्दों के कुमाऊनी अर्थ और कुमाऊनी शब्दों के हिंदी अर्थों को समझाने की रोचक गतिविधियां कराई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक आर्य ने कहा कि भारत भाषाओं का समृद्ध देश है और विद्यार्थियों को भाषाई विविधता और उसके प्रयोग और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी होना बहुत जरूरी है।
3: ये बहुत अच्छी पहल है बच्चों के मनोरंजन से संबंधित और भाषा को बृहत रूप में बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए, तो एक बहुत अनूठी पहल है। इसमें बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत खुश हैं, और हमें भी एक मौका मिला है कि बच्चों को एक अलग से उनको ज्ञान देते हुए मनोरंजन के तरीके से और अनेक प्रकार से उनको

0: खेल खेल में भाषा का ज्ञान देते हुए अनेक गतिविधियों से रूबरू कराते हुए इस समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और इस 7 दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको कुछ विशेष बनाने की कोशिश करेंगे जिससे अधिक से अधिक छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके।
1: छात्र हरेंद्र ने बताया कि समर कैंप में कुमाऊनी भाषा, लोकगीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बारे में नई जानकारी मिली।
2: हमारे स्कूल में 7 दिनों का कैंप लग रहा है 27 मई से 2 जून तक। उसमें आज पहला दिन था सर। इसमें आज हमने बहुत कुछ चीजें सीखी। कुमाऊनी में अंताक्षरी भी खेली और कुमाऊं में अंताक्षरी खेली और हमें बहुत अच्छी चीजें भी सिखाई गई।
1: पौड़ी जिले में LPG गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन व पूर्ति विभाग द्वारा व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 57 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोटद्वार, दुगड्डा और पौड़ी में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर करीब 27,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में LPG गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी या प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को अल्मोड़ा में सम्मानित किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से प्रदेश में सिल्क पार्क की स्थापना के लिए शीघ्र बजट स्वीकृत कराने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने PM पोषण योजना के संबंध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और अनुसरण समिति की बैठक ली। विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में भारतीय भाषाओं पर आधारित 7 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत छू आप सभी श्रोताओं को बोली भाषा की ये कार्यक्रम ग्राम जगतमा। श्रोताओं आपक दगड़ मीछू गीता भंडारी। श्रोताओं आज हमर देशक पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि छू। 27 मई 1964 को उनर निधन है गए छी। नेहरू जी आधुनिक भारतक निर्माताक रूप में याद करी जानी। नेहरू जी पहली और सबसे जद भगत तक अपूर्ण पद पर बड़ी रुण वाले प्रधानमंत्री छे। नेहरू जी पंचवर्षीय योजनाओं और औद्योगिकरण और मध्य का आधुनिक कालक भारतक शिल्पकार ले मानी जानी। आज हम अपन कार्यक्रम ग्राम जगतक माध्यम से उनके याद करनु और अपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करण। श्रोताओ या तो छी हमारे प्रधानमंत्री की बात और आजकल जो खास चीज छू उ छीन आजकल 9 तपा चलड़िन यो यस नाम छू जको हमार कदू नानथिन कदू बड़ बुड़ों को तो पतु हुनो लेकिन हमार जो नई पीढ़ी छू ना उनको पतना कि यो 9 तपा की हूँ। श्रोताओ भारतीय ज्योतिष और मौसम विज्ञानक एक महत्वपूर्ण चक्र छू 9 तपा जो सालक सबसे गर्म दिनों को दर्शू। इन 9 दिनों में सूरजक किरण जो छू ना वो सिद्ध धरती में पड़नी। जैल की बहुत तय ज्यादा गर्मी है जहाँ और गर्म हवा या जकू हम लू कुनू उल चल और आजकल 9 तपा के दिन चलड़िन उसी 25 मई बटी 2 जून तक यो 9 तपा मानी जानी। 9 तपा केवल गर्म ही नहीं होन श्रोताओं या केवल नुकसान नहीं होन बहुत ज़्यादा फायदे ले होनी और खासकर हमारे किसानों के लिए जो कि हमारे खेतों में हमारे गढ़ों में काम करनी। एक गर्मी कारण खेतों में जो कीड़पिटिंग जो झाड़ पात हो ना वो सब मर जा यानी कि नष्ट है जा। जैल की हमारे धरती की जो उपजाऊ क्षमता छू वो बढ़ जा और हमारा जो किसान छिन उनर फसल ले बहुत फैल हूँ। तो इन दिनों में थोड़ा बहुत अपन ले ध्यान धरण चाहिए अपन खान पीन में ध्यान धरण चाहिए और बहुत ज़्यादा जब चटकता हो घाम हो तो घर बटी बिहार नहीं जान चाहिए। अगर जाने पड़ो तो अपन अखबार में कोई कपड़ा डालवे और अपन को नहीं ना कि पूरा ढकी पे जान चाहिए जैसे कि घाम जो छू सिद्ध आपक शरीर पर नहीं पड़ल आपक आंखों पर नहीं पड़ल खुआर में नहीं पड़ल जैसे कि आपको लू नहीं लागली दिक्कत नहीं होल और है सको तो घरक भीतर रहिया जब जरूरी हो तब वह घर बटी बिहार जाया। ये तो कैसा करूँ ज़्यादा तो भाई हमार मर्जी छू हमार सोच छू हम के करनू और के नहीं करनू। श्रोताओ इन बातों का दगड़ ही कार्यक्रम को अखिल के बढ़ूनू और आपको सुनूनू एक सुंदर सा गढ़वाली गीत गीत मा स्वर्ज प्रीतम भरतवाण का।

0: श्रोताओं, आपेल सुन प्रीतम भरतवाण की आवाज़ में युद्ध सुंदर सा गढ़वाली गीत। और श्रोताओं, भूल छू ग्राम जगत में चिट्ठी पत्री को अंक तो जरूर कार्यक्रम में शामिल होया। अपन चिट्ठियों का दगड़ एक बार पत्र बता देनू, चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com यो छू पत। और इन छुई बातों का दगड़ और ये गीत का दगड़ ही अब भगत है गो गढ़वाली माँ उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को। तो सुनो गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम अमगाई। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपयों की अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र थे पर्यावरण अनुकूल बढ़ान की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू हुई हरित हरिद्वार पहल थे व्यापक जन समर्थन मिनुचा। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के तहत जिला का दिव्यांगों जनों और बुजुर्गों का वास्ता निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की पीठ की तरफ बटी भोल बागेश्वर में द्विदिवसीय बैठक को आयोजन, वादों तें भी सुने चालू। अब समाचार विस्तार बटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। ये अवसर पर उन बोली कि यूं योजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं थे नई मजबूती मिलली। उन बोली कि प्रदेश सरकारों संकल्प चा कि विकास को लाभ समाज का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचन और पर्वतीय क्षेत्रों में रोण वाला लुखों तय बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। ये उद्देश्य का दगड़ी देश भर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं थे तेजी से अग्नि बढ़े जानू चा। मुख्यमंत्री ने बोली कि यूं योजनाओं का पूरा होने से जिलावासियों थे बेहतर सुविधाएं मिलली और क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास थे नई गति मिलली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाला 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों थे सम्मानित कैरी। यहां का बाबत जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों थे शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किए गई। यह अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि सतत विकास केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नीचा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य को संकल्प भी चा। उन बोली कि सरकार राज्य प्रदेश में परिस्थितिक और अर्थव्यवस्था का समन्वय का दगड़ी कार्य करनी चा ताकि विकास की गति भी बनी रहे और प्रकृति को संतुलन भी सुरक्षित रहो।
2: जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है, और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी, इकोनॉमी, संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
1: हरिद्वार में अगले साल होने वाली कुंभ मेला की तैयारियों का बाबत कुंभ क्षेत्र थे हरियो भरियों और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करे जाने हरित हरिद्वार पहल थे व्यापक जन समर्थन मिलनु चा। ये कार्यक्रम में मेला नियंत्रण भवन में यहाँ की तैयारियों थे लेकी अभियान का नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करे गई। बैठक में लगभग 45 गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों का प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बोली कि प्रशासन की कोशिश चा कि हर व्यक्ति थे ये अभियान से जुड़ाव महसूस करे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाओ। उन बोली कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पौधरोपण करे जालू।
3: बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको, ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान आपका, पहल आपकी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, जहाँ भी आप पौधे लगाना चाहें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके लोग इसमें प्रतिभाग करें और इसके लिए 2 डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरित हरिद्वार की जो हमारा मिशन है, हमारी जो पहल है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल का तहत जिला का दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का वास्ता निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत करेगी आई। ये कुल लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज कराण का वास्ता बुजुर्गों और दिव्यांगजनों थे मिनुचा। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घंडियालन बताई कि देहरादून एकमात्र इन जिला चा जख निशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू करेगी। उन बोली कि उम्र दराज लुखों और दिव्यांगजनों थे अक्सर इलाज, फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र से जुड़िया कागजी कामों का वास्ता समाज कल्याण विभाग और अन्य अस्पतालों का चक्कर कटन से दिक्कत होंगी। यहाँ थे देखी कि समाज कल्याण विभाग थे चालक सहित इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करेगी।
5: अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल 4-व्हीलर दिया है विद ड्राइवर। और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांगजन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है। ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
1: उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की पीठ की तरफ बटी भूल, बागेश्वर विकास भवन सभागार में द्विदिवसीय बैठक का वास्ता जन सुनवाई होनी चा। आयोग का अनुसचिव राजेंद्र झिंकवाणन ये जानकारी देंदी भगत बताई कि बैठक के दौरान विभिन्न वादों की सुनवाई करे जाली और मानव अधिकार से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करे जालू। आयोग द्वारा संबंधित पक्षकारों और अधिकारियों थे निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिए गए, जहाँ से वादों को प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करे जा सकू। उधम सिंह नगर जिला का नगर निगम रुद्रपुर का महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त सिप्रा जोशीन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करण वाला मेधावी छात्र छात्राओं थे सम्मानित करी। ये दौरान छात्र छात्राओं बटी हुया संवाद में उनका भविष्य, शहर की व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़िया विषयों पर चर्चा वाई। विद्यार्थियों भी खुलकर अपना सुझाव रखनी। ये अवसर पर महापौरन आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों थे निगम की तरफ बटी छात्रवृत्ति देन और शैक्षिक भ्रमण पर भेजन की बात भी बोली।
6: हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया। और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी। बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए। तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और इसके साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी, अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निःशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
1: उकी छात्रा कशि सिंघन नगर निगम की ये पहल की सराहना कैरी।
7: आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने। तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव्स देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन अल्मोड़ा में करीब 138 करोड़ रुपयों की अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कैरी। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र थे पर्यावरण अनुकूल बढ़ान की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू होनी हरित हरिद्वार पहल थे व्यापक जन समर्थन मिलनो चा। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के तहत जिला का दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का वास्ता निशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की पीठ की तरफ बटी भोल, बागेश्वर मा द्विदिवसीय बैठक को आयोजन, वादों ते भी सुने चालू। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों को यू अंक भी समाप्त हुई। नमस्कार।
0: गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ ग्राम जगत को यो अंक इत्ती संपन्न हूं। नमस्कार।
4: पर्वत अंजनों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार, सभी किसान साथियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम कृषि जगत में। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी साथी मीरा नेगी। साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और साथ ही अपने सभी कृषि कार्यों को समय पर कर रहे होंगे। साथियों, आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। आज के दिन पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके देश के प्रति योगदान को भी याद करता है। साथियों, नेहरू जी महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग तो लिया ही, साथ ही वो कई बार जेल भी गए। उनका सपना एक स्वतंत्र, मजबूत और आधुनिक भारत बनाना था। वे आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा दिया और साथ ही देश को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उनके समय में साथियों कई बड़े संस्थानों की भी स्थापना हुई जो आज भी देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। नेहरू जी मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं। साथियों, नेहरू जी के विचार और आदर्श आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर देश की उन्नति में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। इसी के साथ साथियों, समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: साथियों, अब समय है भेंटवार्ता का और आज का विषय है बचत का महत्व। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं मुकेश अरोड़ा और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली।
4: साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मुकेश अरोड़ा जी, जो कि पिछले 2 दशकों से लोगों को उनकी संपत्ति को संभालने में बढ़ चढ़कर उनकी मदद कर रहे हैं। आप 600 से अधिक परिवारों को वित्तीय सहायता आप प्रदान कर रहे हैं। तो आज जो हमारी बातचीत का विषय अरोड़ा साहब आपके साथ रहने वाला है, वो विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो बचत किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि किसानों की जो आय है वो एक निश्चित आय उनकी नहीं है। कभी उनको अच्छा उत्पादन मिला, कभी उन्हें इतना अच्छा उत्पादन ना मिले, तो उस स्थिति में बचत को वो किस रूप में देख सकते हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि किसान, जैसे आपने बताया, कि निश्चित आय नहीं होती
4: जी,
5: तो ऐसा कर सकते हैं, अपनी जो जरूरत है थोड़ा सा उनको देखना होगा। बेसिकली 2 तरह की जरूरत होती है उनकी, एक शॉर्ट टर्म अल्पअवधि की, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में जैसे सपोज करिए कि उनका कभी कोई फसल अच्छी नहीं हुई, या कोई घर में कोई शादी आ गई, या किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है, वो एक शॉर्ट टर्म जरूरत होती है। और कुछ जरूरत ऐसी होती है कि जब वो कोई किसान भाई हमारा जब खेती नहीं, वृद्ध अवस्था में आ जाता है, खेती नहीं कर सकता, तो लॉन्ग टर्म की होती है। तो 2 डिफरेंट तरह के गोल होते हैं उसके। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे उसको चाहिए कि 3-4 महीने बाद उसकी फसल आनी है, अगर किसी वजह से नहीं अच्छा आ पाता, तो वो बैंक, या जैसे आपने देखा होगा गाँव के अंदर पोस्ट ऑफिस की सुविधा होती है, वहां वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके वहां उस पैसे को रख सकता है। और जहां हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे आजकल आधुनिक समय में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह आ गए, वो वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करके उसको शुरुआत कर सकता है
4: जी। कई बार किसान को हम देखते हैं कि ज़्यादा खर्चीला ना होना, अगर वो बचत करता है तो परिवार वाले भी ताने कसने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजूसी है आप, तो क्या बचत और कंजूसी एक ही बात समझें या इसमें कुछ अंतर है?
5: नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लोग अक्सर बोलते हैं जब कभी आदमी बात करता है, घर वाला, कोई हाउस होता फैमिली बात करता है सेविंग की, तो झट से घर वाले बोलते हैं कहाँ कंजूसी की बातें कर रहे हैं, कल किसने देखा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। देखिए, कोई भी इंसान जो है जिंदगी भर काम नहीं कर सकता
4: जी, जी।
5: जैसे हम बात करें कि करीबन 24-25 की उम्र तक आदमी अपना एक काम करना शुरू कर देता है, और अगर किसान अगर है तो 60-65-70 की साल की उम्र तक वो काम करता है, उसके बाद अल्टीमेटली वो घर बैठेगा
4: जी।
5: तो वहां उसकी आय उसके खत्म हो जाएगी। आय खत्म होगी लेकिन उसके खर्चे खत्म नहीं होंगे, बल्कि वृद्धावस्था में उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं। तो वहां पर पैसा कहां से आएगा? वहां पर पैसे के लिए उसको बचत बहुत जरूरी होती है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसके अलावा भी अगर देखें, जो किसान की रेगुलर इनकम होती है, रेगुलर इनकम से तो उसके रेगुलर खर्चे निकल जाते हैं, परंतु जो उसके अदर खर्चे होते हैं, जैसे फिर मैं बात करूंगा, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, या कुछ उसे घर में कोई शादी आती है, या कुछ भी इस तरह के मेडिकल इमरजेंसी खर्चे आते हैं, उसके लिए भी पैसों की जरूरत होती है। इन दोनों के अलावा तीसरी चीज अगर देखा जाए, तो कई बार लाइफ में चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पास्ट में देखिए ना, कोविड आया, किसी ने नहीं सोचा होगा कभी कोविड लाइफ में आ जाएगा। कोविड के समय सब लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के काम खत्म हो गए, किसान भाइयों को भी दिक्कत हुई, उनकी फसल जाकर बड़ा मुश्किल हो गया था बेचना। उस समय अगर आदमी की बचत नहीं होगी तो आदमी कैसे खाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि लाइफ में आदमी को, जैसे गौतम बुद्धा ने कहा था ना, मध्यम मार्ग, बैलेंस लाइफ, तो आदमी को वो रास्ता चुनना पड़ेगा जिसमें उसको अपना आज और अपना कल दोनों देखने हैं, कि आज भी को भी कंप्रोमाइज ना करे और फ्यूचर में अपने थोड़ा इतना सेविंग करे कि कल कोई अगर मुश्किल समय आता है तो उसको आराम से समय

0: को निकाल
1: जी
0: पाए।
1: अच्छा, अरोड़ा साहब अक्सर किसान के साथ क्या रहता है, खेती किसानी में तमाम उसके खर्चे रहते हैं, खेत की जुताई करनी है या बीज उसने खरीदना है, और घर के भी खर्चे हैं, तो घर का खर्चा और खेत के खर्चे का संतुलन वो कैसे बनाए ताकि भविष्य के लिए कुछ पैसा बच सके। हाँ
0: सही बोला आपने। देखिए, जब अच्छा समय आता है तो अच्छे समय में हमें खराब समय की तैयारी करनी पड़ती है,
1: हाँ
0: ठीक है। तो जब अच्छा समय है आपका, थोड़े पैसे जब फसल कटी, कुछ पैसा आपके पास आया, तो हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ थोड़ा सा पैसा बचा करके, अगर कल को कुछ खराब समय आता, मुश्किल समय आता है, वहां पर सेव करना पड़ेगा। तो हमारे पास वहां पर, जैसे मैंने बताया आपको कि पोस्ट ऑफिस होता है गाँव में या बैंक होता है, वहां के सेविंग अकाउंट खोल करके वहां थोड़ा पैसा रखे, जिससे मुश्किल समय में वो पैसा उसके काम आ सके।
1: जी, बचत और निवेश में अगर हम देखें तो क्या अंतर इनमें है?
0: देखिए, बचत क्या होता है कि जो हमने कमाया, थोड़ा सा पैसा जो बचा हमारे पास, वो हमने बचत में रख दिया।
1: जी
0: उसके साथ मुश्किल क्या होती है बचत के साथ, कि वो पैसा इन्फ्लेशन, जिसे हम बोलते हैं महंगाई की दर, वो उसको बीट नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो सेविंग बैंक में पैसे रखता है तो वो 2.5% का उसको ब्याज मिलता है,
1: जी
0: FD में जाता है तो 6-6.5% मिलता है। तो अगर हम लंबे समय में देखें तो इतना तो हमारा महंगाई की दर भी होती है, तो वो पैसे की एक्चुअल वृद्धि नहीं हो पाती।
1: जी
0: उसके लिए हमें जो आधुनिक हमारे को इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह है, वहाँ आपको 11-12% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है। उसको हम निवेश या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम लोगों को आजकल देखना पड़ेगा, जो लंबे समय की हमारी सेविंग है उसको हम लोग जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग सेविंग या बचत की तरफ जा सकते
1: जी
0: हैं।
1: कई बार किसानों का रहता है ना कि फसल से उसको अच्छा मुनाफा हुआ,
0: बिल्कुल
1: फसल
0: बिल्कुल
1: की कटाई के बाद उसको फसलों के अच्छे दाम मिल गए,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद वो आने वाले समय के लिए या तो जो पैसा है वो घर में रख लेगा या फिर वो बैंक में पैसा रख लेगा। थोड़ा
0: बिल्कुल
1: बताएं कि किस तरह से उस पैसे का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अच्छे ढंग से उसका निवेश किया जा सकता है।
0: घर में जब वो पैसा रखेगा तो पैसा कुछ पैसे से पैसा नहीं आता। जैसे किसान होता है ना, किसान अगर बीज को घर में रख लेगा तो कुछ नहीं होगा। किसान बीज को लेके जा करके मिट्टी में बोएगा,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: पानी देगा, तो उससे उसको फसल पैदा होगी। ऐसे ही हमारा जो पैसा होता है, पैसा भी हमारे बीज की तरह ही होता है। जब उसको हम बैंक में लेके जाएंगे, उसको हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे कुछ रिटर्न बनेगा। तो पैसे घर में तो उल्टा चोरी होने का वो डर रहेगा, उसको जब हम बैंक में या लगाएंगे तो पैसे को हम काम पे लगाना पड़ेगा। पैसा हमारे एक इम्प्लॉय की तरह होता है, जब हम उसे काम पे लगाएंगे तो हम कुछ बदले में कमा कर देगा, प्लस वो जैसे महंगाई की तरह बताया मैंने, या इन्फ्लेशन को बीट भी करता है।
1: जी जैसे कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि जो किसान हैं उनकी आय निर्धारित तो है नहीं, कभी उनको अच्छा मुनाफा है, कभी उनको कम मुनाफा हो रहा है, तो इस स्थिति में किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी बचत क्या वो कर सकते हैं?
0: बिल्कुल छोटी बचत से कर सकते हैं, बल्कि वो 100-200 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। बैंक अगर सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आजकल तो सरकार ने भी जनधन अकाउंट की सुविधा जो दे रखी है, तो उसके थ्रू बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोल कई जगह पर है फैसिलिटी। छोटे छोटे अमाउंट जैसे आता रहेगा वैसे जमा करते रहें, और इवन म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं,
1: जी
0: वहां पर भी 100 रुपए महीना से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपने आज पैसा दिया तो फ्यूचर में आपको देना ही देना है।
1: जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी बचत भी जो हमारे किसान साथी हैं वो शुरुआत कर सकते हैं, और आज तो तरह तरह की सरकार भी चाह रही है कि जो किसान हैं उनको फायदा हो, कुछ इस तरह की कि किसानों के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं या कुछ इस तरह का चल रहा है?
0: जैसे जनधन अकाउंट की मैंने बात करी, वो सरकार ने ऐसे लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया था कि जैसे एक कॉमन मैन जो आउटर में रहता है, वो भी हमारे बैंकिंग सुविधाओं के साथ जुड़ सके, तो वहाँ बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। प्लस आजकल डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर जगह इंटरनेट की फैसिलिटी है,
1: जी
0: क्योंकि गाँव के अंदर देखा होगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल इंटरनेट के माध्यम से वो दूर दराज के एरिया में रहने के बाद भी उस सुविधा का फायदा उठा सकता है। इवन आजकल वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकता है,
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस ने भी अपना ऑनलाइन शुरू कर दिया है, तो उस माध्यम से कर सकता है। वैसे तो आजकल हर जगह बैंक और पोस्ट ऑफिस सुविधा रहती है, अगर नहीं कर पा रहा तो ऑनलाइन भी कर सकता है।
1: जी बचत के लिए अरोड़ा साहब सबसे जरूरी है कि जो हमारे फिजूल खर्ची हैं उस पर हम नियंत्रण रखें, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को?
0: देखिए, उसके लिए तो आदमी को अपने आप पर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आजकल देखें, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको चकाचौंध दुनिया की नजर आती है, तो आपको अपना इनकम के हिसाब से ही इसमें एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना आपका इनकम होता है, आपको पहले सबसे पहले जैसे ही पैसा आपके पास है, सबसे पहले थोड़ा सा पैसा उसमें से आपको अपना सेविंग के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको ही आपको अपने बाकी खर्चे करने पड़ेंगे।
1: जी
0: जिससे हम लोग अपने थोड़ा सा मुश्किल समय में उस पैसे का उपयोग कर सके।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि त्योहारों का समय हो, शादी समारोह का समय
0: बिल्कुल
1: हो, तो हम अपनी जेब देखे बगैर
0: बिल्कुल
1: अंधाधुन जो खर्चा है वो कर देते हैं, और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद
0: बिल्कुल
1: हमारा जो पूरा बैलेंस रहता है, पूरा
0: बिल्कुल
1: साल भर
0: बिल्कुल
1: का जो हम लेके चलते हैं, वो गड़बड़ा जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो अरोड़ा साहब, चलते चलते कार्यक्रम में क्या कहेंगे हमारे तमाम किसान साथी आज आपको सुन रहे हैं?
0: किसान साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको अपनी जरूरत को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो उनके साथ क्या है, मुश्किल समय कभी भी आ सकता है, कभी
1: जी
0: भी, क्योंकि मौसम के ऊपर भी उनकी चीज़ें डिपेंडेंट रहती हैं, तो उनको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा एटलीस्ट अपने शॉर्ट टर्म नीड को। तो उनको थोड़ा पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस हमेशा रखना पड़ेगा, जिससे उनकी कभी मुश्किल समय आता है तो उस समय को आसानी से पार कर सके। इसके अलावा थोड़ा पैसा जितना भी कर सकते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ अवधि के लिए वो म्यूचुअल फंड में जरूर डालें अपना, जिससे उनका पैसे की एक्चुअल वृद्धि जिसे बोलते हैं ना, जो इन्फ्लेशन को बीट करके, महंगाई की दर को बीट करके 11-12% का रिटर्न आ सकता है, जिससे जब भी वो उस कृषि के काम को छोड़ेंगे तो उन पर इतना पैसा हो कि अपना गुजर बसर ठीक से कर सकें।
1: जी, ये जो निवेश है वो एक छोटी सी राशि से भी उबर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं,
0: बिल्कुल 100 रुपये महीने से भी शुरू कर सकते हैं उसको।
1: तो हमारे जो किसान साथी हैं उनको खास इस बात का ध्यान रखना है कि भविष्य के लिए इस तरह की छोटी छोटी बचत बहुत जरूरी है। तो मुकेश अरोड़ा जी, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और बचत के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार,
0: आपका
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसमें आज का विषय था बचत का महत्व। जानकारी दे रहे थे मुकेश अरोड़ा और इनसे बातचीत कर रहे थे विकास चमोली। उम्मीद है साथियों आपने इस भेंटवार्ता को ध्यान से सुना होगा और आप इससे भविष्य में लाभ भी जरूर लेंगे। साथियों, आज के समय में खेती में नई नई तकनीकों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बदलते मौसम में, जैसे कि कभी अधिक गर्मी पड़ना या बारिश कम होने की वजह से हमारे किसान साथी सुरक्षित खेती नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब पॉली हाउस खेती में हमारे किसानों को पूरे साल खेती करने का फायदा मिलता है। मौसम चाहे गर्मी का हो, सर्दी हो या बारिश, फसल हमेशा सुरक्षित रहती है। साथियों, पॉली हाउस एक विशेष प्रकार का ढांचा होता है, जिसे लोहे, पाइप या बांस की सहायता से बनाया जाता है, और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की मोटी चादर भी लगाई जाती है। इस ढांचे के अंदर तापमान, नमी और रोशनी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे पौधों को अच्छा वातावरण मिले और वे सुरक्षित रहें। बात करें बेमौसमी खेती की, तो जब किसी फसल में या सब्जी को सामान्य मौसम के अलावा दूसरे समय में उगाया जाए तो उसे बेमौसमी खेती कहते हैं। सामान्य खेती से बेमौसमी खेती संभव नहीं है, इसके लिए पॉली हाउस की जरूरत होती है। पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी भी कम होती है। इसमें कीट और रोग भी कम लगते हैं, क्योंकि फसल बाहर के वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसमें कम जमीन का उपयोग होता है और इससे अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है। हमारे कई किसान आज पॉलीहाउस खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं। युवा किसान भी इस तकनीक को अपनाकर खेती कर रहे हैं। अगर किसान अच्छे बीज का चयन करे, समय समय पर सिंचाई करे और खाद का इस्तेमाल करे, पॉलीहाउस की सफाई बनाए रखे और साथ ही तापमान और नमी का भी सही ध्यान रखे, तो पॉली हाउस खेती उनके जीवन में खुशहाली ला सकती है और उन्हें समृद्ध भी बना सकती है। तो इसी के साथ साथियों, अब समय है गीत का, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
3: डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड गिव अप ऑन योर ड्रीम ऑफ जॉइनिंग उत्तराखंड्स हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी। अवेल 25% डोमिसाइल स्कॉलरशिप एंड जॉइन UPES। एप्लीकेशंस क्लोज ऑन 30th मई। टू स्टार्ट योर UPES जर्नी अप्लाई नाउ एट UPES.ac.in।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, इस गीत के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, 248-001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अब अपनी साथी मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों अपदगढ़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल अलमाड़ में करीब 138 करोड़ डबलों की अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करी जाने हरित हरिद्वार पहल को ठुल जन समर्थन मिलनो। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग एक संयुक्त पहल भीतर जिला दिव्यांगजनों और बुढ़बाड़ियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग एक पीठ की तरफ बटी भोल बक्सर में 2 दिनों की बैठक का आयोजन, वादक ले होली सुनवाई। अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज अलमाड़ में करीब 138 करोड़ डबलों की अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। यो मौके पर उन्होंने कहा कि यो योजनाओं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगर विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारक संकल्प छु कि विकासक लाभ समाजक अंतिम व्यक्ति ताले पूछ सको और पर्वतीय जागों में ऋणवाल लोगों को भल सुविधाएं उपलब्ध हो सको। यही उद्देश्यक दगड़ प्रदेश भर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं को तेजी लागिल बढ़ाई जानो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यो योजनाओं पूर हुणल जिला वासियों को भल सुविधाएं मिलल और क्षेत्रक सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज अलमाड़ में भई राज्य स्तरीय SDG अचीवर्स अवार्ड समारोह में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले 32 संगठनों, व्यक्तियों और समूहों को सम्मानित करो। यह के अलावा जिला स्तरीय SDG की वार्षिक रैंकिंग में 6 जिलों को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत करी गयो। यो मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार विकास खाली वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति ताले सीमित है, बल्कि उन वाली पीढ़ियों की सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य संकल्प लक्ष्य। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था का समन्वय दगड़ काम करने, जैल विकास गति ले बनी रहे और प्राकृतिक संतुलन ले सुरक्षित रोल।
2: जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है, और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है।
1: हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के अंतर्गत कुंभ क्षेत्र को हरी भरी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करी जाने हरित हरिद्वार पहल को ठुल जन समर्थन मिलनो। यही क्रम में म्याल नियंत्रण भवन में यह की तैयारियों को लिबेर अभियानक नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में

0: एक बैठक है। बैठक में लगभग 45 गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों भाग ले। मुख्य विकास अधिकारी को कि प्रशासन ने कोशिश छू कि हर व्यक्ति को यो अभियान थे जुड़बेर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभोण चे। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगहों में बोट रोपण काम ले करी जल।
1: बार का कुंभ हमारा जो है इसको ग्रीन कुंभ की कॉन्सेप्ट में हम लेकर चल रहे हैं और जो हमारा कुंभ एरिया है यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हरित हरिद्वार हम इसको, ये जो हमारा मिशन है इसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है जिसमें लगभग 45 के आसपास स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। तो पूरी कॉन्सेप्ट ये है कि प्लान आपका, पहल आपकी और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम रिसोर्स देंगे, संसाधन देंगे, जहाँ भी आप पौधे लगाना चाहें हमारी टीम वहाँ पर पहुँचेगी। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके लोग इसमें प्रतिभाग करें। इसके लिए दो डेडिकेटेड नंबर जारी किए गए हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हरित हरिद्वार की जो हमारा मिशन है, हमारी जो पहल है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग दगड़े पहलक भीतर जिला दिव्यांगजनों और बुढ़वाड़ियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा की शुरुआत की गई छू। यह लाभ समाज कल्याण विभाग में पेंशन और अस्पताल में इलाज करुण के लिए बुढ़वाड़ियों और दिव्यांगजनों को मिलनो। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिड़ियाल ने बता कि देहरादून एकमात्र यश जिला छू जहाँ निःशुल्क ई वाहन व्यवस्था शुरू की गई छू। उन्होंने कहा कि उम्रदराज लोगों और दिव्यांगजनों को कभी कभी इलाज, फिजियोथेरेपी और पेंशन प्रमाण पत्र थे जुड़ी कागजी कामों के लिए समाज कल्याण विभाग और दुहर अस्पतालों चक्कर काटन थे परेशानी का सामना करन पड़छी। यकू ध्यान में राघवीर समाज कल्याण विभाग को चालक दगड़े इलेक्ट्रिक गाड़ी उपलब्ध कराई गई छन।
3: अभी सैटरडे को यानी 23 तारीख को जिला प्रशासन द्वारा समाज कल्याण विभाग को एक चार्जेबल फोर व्हीलर दिया है विद ड्राइवर। और इसका मेन कारण ये कि समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी वृद्ध और दिव्यांग जन आते हैं अपने पेंशन के काम से, हैंडीकेप लोग आते हैं पेंशन के काम से, तो उनको वापस उनके घर तक छोड़ना है, ये सुविधा सब निःशुल्क है। एम कोई दिव्यांग जैसे मार्केट में है, उनको DDRC जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो इस वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन इसका निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।
0: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग एक पीठ और बटी भूल बक्सर विकास भवन सभागार में दी दिनों बैठक दगर जनसुनवाई ले होली। आयोग अनुसचिव राजेंद्र झिंकवाणल यो जानकारी दिविर बता कि बैठक वक्त अलग अलग वादों की सुनवाई की जाल और मानवाधिकार से जुड़ी मामलों में विचार विमर्श करी जाल। आयोग द्वारा जुड़ी पक्षकारों और अधिकारियों को तय तारीख और बखत पर पूजनक निर्देश दी गई छन, जेल वादों प्रभावी और बखत पर समाधान तय करी जा सको। उधम सिंह नगर जिला नगर निगम रुद्रपुरा महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशील हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में भल प्रदर्शन करण वाल होशियार नांतिनों को सम्मानित करो। यो बखत नांतिनों थे वही बातचीत में उनर भविष्य, शहरक व्यवस्थाओं और शिक्षा से जुड़ी विषयों में बात करी गे। विद्यार्थियों खुलबेर अपन सुझाव रखी और यो मौक पर महापौरल आर्थिक रूपल कमजोर मेधावी नांतिनों को निगम एक तरफ बटी छात्रवृत्ति दिनक और शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की बात ले कही।
4: हमने शहर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हाईस्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको आज नगर निगम में सम्मानित किया है और उनके साथ संवाद भी हमने स्थापित किया। और उस संवाद में बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा निकल कर आई थी, बहुत सारे बच्चों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शहर की स्वच्छता को लेकर अपना विजन दिया और कुछ बच्चों ने हमसे मांग भी की है कि कैरियर काउंसलिंग या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नगर निगम से मिलनी चाहिए। तो जिस पर हमने तय किया है कि नगर निगम अभी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देगा जो शहर के अच्छे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और के साथ ही हम उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी, अपने जो टॉपर बच्चे हैं उनको एजुकेशन टूर के रूप में भी किसी न किसी स्थान पर निशुल्क लेके जाएंगे ताकि वहां से कुछ चीजों को सीखें।
0: वही छात्रा कसी सिंगल नगर निगम में जो पहले प्रशंसालय करी।
5: आज हम नगर निगम के इस प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे हम उत्तीर्ण करे हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छी पहल है ये बच्चों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, एंड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रखने का मौका मिला था, सुझाव हमने रखे थे गवर्नमेंट के लिए अपने, तो अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है एंड उस लेवल के लोगों को इनिशिएटिव्स देने का सजेशन मिल पा रहा है, एंड दिस इज अ ग्रेट वे कि हम लोग उनसे इंटरेक्ट करके अपने ओपिनियंस वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जस्ट एज स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे हमने ही इन चीजों में आगे बढ़ना है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ललमाड़ में करीब 138 करोड़ डबलों की अलग अलग विकास योजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास करो। हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा शुरू करी जाने हरित हरिद्वार पहल को ठुल जन समर्थन मिलनो। देहरादून जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग एक संयुक्त पहल भीतर जिला दिव्यांगजनों और बुढ़वाणियों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक वाहन सेवा शुरू। और उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग एक पीठक और बटी होल बागेश्वर में दी दिनों बैठक का आयोजन, वादों के लिए होल सुनवाई। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ, नमस्कार।
6: आप सुन रहे थे कुमावनी प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कॉकटेल फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं पहला गीत कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है प्रीतम का।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम राज्य दर्शन।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन में मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं राज्य के तमाम पर्यटक स्थलों की ओर, और इसी कड़ी में आज के इस अंक में हम आपको लेकर चल रहे हैं हिमालय की गोद में बसे उस शांत, सुंदर और ऐतिहासिक नगर की ओर जिसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, यानी गैरसैंण।
2: आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं।
1: यह केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं बल्कि प्रकृति की निर्मल छटा, लोक संस्कृति की सादगी और पहाड़ों की आत्मा को अपने भीतर समेटे एक अद्भुत यात्रा स्थल है। समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य संतुलन का प्रतीक माना जाता है। चारों ओर फैले देवदार, बुरांश और बांज के घने जंगल, दूर दूर तक दिखाई देती हिमालय की श्रृंखलाएं और शांत वातावरण, यह सब मिलाकर इस स्थान को विशिष्ट बनाते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग लंबे समय से चलती रही और अंततः इसे औपचारिक रूप से राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा मिला। इस ऐतिहासिक निर्णय ने गैरसैंण को प्रशासनिक ही नहीं बल्कि पर्यटन के मानचित्र पर भी प्रमुख स्थान दिलाया। गैरसैंण से कुछ ही दूरी पर स्थित है भराड़ीसैंण, जहां भव्य, सुंदर और विराट विधानसभा मौजूद है। भराड़ीसैंण पहाड़ों के बीच बना यह आधुनिक परिसर परंपरा और प्रगति के अद्भुत संगम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब भी यहाँ विधानसभा सत्र आयोजित होता है तो पूरे क्षेत्र में एक अलग ही ऊर्जा और हलचल दिखाई देती है, और इस बार भी यानी साल 2026 में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र का आयोजन होगा। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र की तिथि घोषित कर दी है। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को पत्र भेज दिया है, और इसी के साथ विधानसभा को अब तक पक्ष व विपक्ष के विधायकों से 500 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। हालांकि सत्र आहूत होने में अभी समय है जिससे प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से कई विधेयक वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट पर सदन पटल पर रखे जाएंगे। खैर, प्रकृति प्रेमियों के लिए गैरसैंण किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की सुबहें धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच धीरे धीरे उगते सूर्य के साथ शुरू होती है, और शामें सुनहरे आकाश में ढलते रंगों के साथ मन को शांति देती है। बरसात के मौसम में हरियाली अपने चरम पर होती है, जबकि सर्दियों में दूरस्थ हिमालयी चोटियां बर्फ से ढकी दिखाई देती हैं। साफ मौसम में आप विश्व प्रसिद्ध पर्वत शिखर नंदा देवी की झलक भी देख सकते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। श्रोताओं, गैरसैंण की यात्रा केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रहती बल्कि इसके आसपास अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है आदि बद्री। पत्थरों से निर्मित ये मंदिर कत्यूरीकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। मान्यता है कि यह क्षेत्र कभी भगवान विष्णु की तपोभूमि रहा। मंदिर परिसर की शांति और पौराणिक आभा यात्रियों को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देती है। यदि आप प्रकृति के और निकट जाना चाहते हैं तो गैरसैंण से आगे बढ़ते हुए कुमाऊं की दिशा में स्थित

0: कौसानी भी एक सुंदर पड़ाव बन सकता है। कौसानी, महात्मा गांधी ने यहाँ के सौंदर्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। हिमालय की विस्तृत श्रृंखलाओं का जो विहंगम दृश्य कौसानी से दिखाई देता है, वह जीवन भर स्मृति में बस जाता है। रोमांच प्रेमियों के लिए भी यह क्षेत्र कम आकर्षक नहीं है। पास ही स्थित औली अपने विश्व स्तरीय स्कीइंग ढलानों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में जब बर्फ की मोटी चादर यहाँ की ढलानों को ढक लेती है, तो देश विदेश से पर्यटक स्कीइंग का आनंद लेने पहुंचते हैं। वहीं गर्मियों में ट्रैकिंग, कैंपिंग और प्रकृति भ्रमण के अनेक अवसर मिलते हैं। गैरसैंण की सांस्कृतिक पहचान भी उतनी ही समृद्ध है जितनी इसकी प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ के लोकगीत, झोड़ा चांचरी जैसे पारंपरिक नृत्य और मेलों त्योहारों की जीवंत परंपरा पहाड़ की आत्मा को प्रकट करती है। स्थानीय लोगों का सरल स्वभाव और अतिथि देवो भव की भावना यात्रियों को अपनापन देती है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन मंडुए की रोटी, झंगोरे की खीर और भट की चुटकानी स्वाद के साथ साथ पोषण से भी भरपूर होते हैं। अब यदि यात्रा की बात करें तो गैरसैंण तक पहुंचना भी अपने आप में एक सुंदर अनुभव है। निकटतम प्रमुख शहर है देहरादून। देहरादून जहां हवाई अड्डा और रेल मार्ग दोनों उपलब्ध हैं। देहरादून से सड़क मार्ग द्वारा पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए लगभग 8 से 10 घंटे में गैरसैंण पहुंचा जा सकता है। रास्ते भर बदलते दृश्य, घाटियां, नदियां और छोटे छोटे पहाड़ी गांव यात्रा को यादगार बना देते हैं। यात्रा का सबसे उपयुक्त समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक माना जाता है। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है और हिमालय के दृश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। श्रोताओ, इस कार्यक्रम के अगले अंक में मेरे सहयोगी आशुतोष बता रहे हैं जौनसार बाबर के रोमांच और पर्यटक स्थलों के बारे में। सुनिए।
1: आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं।
2: श्रोताओं, राज्य दर्शन के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे पर्यटन स्थल की जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन वास्तुकला, अनोखी जनजातीय संस्कृति की झलक के साथ एडवेंचर और ट्रैकिंग, इन सब का आनंद आप एक साथ ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं जौनसार बाबर की। श्रोताओं, आपको बता दें कि जौनसार और बाबर दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के नाम हैं जो एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। यानी दोनों क्षेत्रों के लोग जौनसारी जनजाति से संबंधित है, जिनकी भाषा, रीति रिवाज, पहनावा और विश्वास प्रणाली एक दूसरे से मिलती जुलती है। ये क्षेत्र देहरादून जिले के चकराता, कालसी और त्योणी तहसील के साथ इसके आसपास के पर्वतीय इलाकों में फैला है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जौनसार बावर आपके लिए एक रोमांचक पर्यटन स्थल है। श्रोताओं, लंबे समय तक बाहरी दुनिया से लगभग कटे रहने के कारण आज भी जौनसार बावर अपनी पुरातन पहचान को सहजे हुए है। इसलिए ये क्षेत्र इतिहास प्रेमियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए भी एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। ये अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जीवंत संग्रहालय है। दूसरा, इतिहासकार मानते हैं कि क्षेत्र कभी महाभारत कालीन खांडव प्रस्थ से जुड़ा रहा है और यहाँ की बहुपतित्व प्रथा, यानी कि एक महिला के द्वारा अनेक पुरुषों के साथ विवाह करना या जिसे हम पॉलियंड्री कहते हैं, उसका भी चलन यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि पॉलियंड्री अब यहाँ पर काफी कम हो चुकी है, लेकिन महाभारत में पांडवों और द्रौपदी की जो कथा आती है उसी तरह की परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। इसके साथ ही यहाँ का जो वास्तुशिल्प है, मंदिर निर्माण शैली है, ये इसे हिमालय के अन्य भागों से थोड़ा खास बनाती है। अब आपको बताते हैं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक स्थलों के बारे में। टाइगर फॉल्स। चक्राता के पास मौजूद टाइगर फॉल्स एक सीधा गिरता हुआ झरना है जहाँ घने जंगलों से होकर आप यहाँ पहुंच सकते हैं एक छोटे ट्रैकिंग एडवेंचर की तरह। झरने की झरझर की आवाज और ताजगी से भरी हवा मन को तरोताजा कर देती है। लाखामंडल मंदिर यहाँ पर मौजूद है। ये महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है और माना जाता है कि दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए यहीं पर लाक्षाग्रह बनाया था। यहाँ की शिव मूर्तियां, प्राचीन गुफाएं पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हनोल का महासु देवता मंदिर यहाँ पर मौजूद है। महासु देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर देवदार की लकड़ी से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला, जिसे कठकुनी शैली कहते हैं, यानी वुडन एंड स्टोन इंटरलॉकिंग आर्कियोलॉजिकल जो यहाँ पर डिजाइन है, वो काफी फेमस है। इसके अलावा देवन और टॉस नदी की घाटियों का आप आनंद ले सकते हैं। जौनसार की घाटियां देवदार, बुरांस, ओक और चीड़ के जंगलों से भरी है। यहाँ के टॉस नदी न केवल सिंचाई का स्रोत है बल्कि कैंपिंग जैसे गतिविधियों के लिए भी आदर्श मानी जाती है। यहाँ की जो कठकुनी शैली है, यानी वुडन स्टोन इंटरलॉकिंग आर्कियोलॉजिकल जो डिजाइन है, आपको बता दें कि इसमें सीमेंट और कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पत्थर और लकड़ी को इंटरलॉक करके घरों को बनाया जाता है। यहाँ पर लकड़ी पर की गई जो जटिल

0: काशी है ड्रैगन जैसे चेहरों की जो मूर्तियां हैं इसे और भी खास बनाती हैं। स्थानीय लोग रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, पुरुष रिंगाल की बनी टोपी और ऊनी चूड़ीदार वस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं चांदी के भारी आभूषण और पारंपरिक वस्त्रों से सजी होती हैं। यहाँ के नृत्य जैसे हरुल, थड़िया, झोड़ा और वाद्य जैसे ढोल, रणसिंगा, दमो, ये पर्यटकों को एक अलग ही लोक जगत का अनुभव भी कराते हैं। किस तरीके का पर्यटन अनुभव आपको यहाँ पे मिल सकता है? तो आप होम स्टे में रह सकते हैं, स्थानीय परिवारों के साथ रहकर जीवन शैली का आप यहाँ की जीवन शैली का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। देव अनुष्ठानों में आप भाग ले सकते हैं, जैसे महासु देवता की पूजा, लोक नाट्य और कथा सुनना। स्थानीय हाट और मेले यहाँ पर लगते हैं, जिसमें हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र और जैविक उत्पादों की खरीद आप कर सकते हैं। वन ट्रैक्स और गांव दर्शन जैसे ट्रांस ह्यूमन जीवन शैली, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। ट्रांसह्यूमन जीवन शैली यानी मवेशियों के साथ प्रवास जो करते हैं, उस तरह की जीवन शैली को देखने का अवसर आपको मिल सकता है। बाइकिंग, राइडिंग और रोड ट्रिप के लिए त्यूनी, हनोल, बाबर रूट, इसका आप आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ रिवर क्रॉसिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, वाटर रैपलिंग, बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ वॉक जैसे तमाम चीजों का आनंद आप ले सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ राज्य दर्शन का ये अंक यहीं पर समाप्त हुआ। आपसे अगले बुधवार को फिर मुलाकात होगी राज्य दर्शन के एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम राज्य दर्शन। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं समृद्धि विश्व की अंग्रेजी वार्ता, जिसका विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर कॉमन सिटीजन्स।
2: Daily lives, we often hear terms like EMI, credit score, insurance premium, SIP, cashback offers, UPI payments, GST, and loan eligibility. These words may sound technical, but they are now a part of everyday life for ordinary citizens. Understanding such common financial terms helps people make smarter decisions and avoid confusion. At the same time, citizens should also know about useful government schemes designed for public welfare. Schemes like Jan Dhan Yojana, Atal Pension Yojana, and Affordable Insurance and Savings Program helps families build financial security and encourage disciplined savings. Awareness about such schemes can greatly support rural families, workers, and middle-income households. However, along with opportunities, financial risks are also increasing. Nowadays, scams have become very common. Fraudsters may pretend to be bank officials, government officers, customer care executives, or even investment advisors. People receive fake calls asking for OTPs, messages claiming lottery winnings, links promising cashback rewards, or apps offering instant loan with hidden charges. Many innocent citizens lose money because of panic, greed, or lack of awareness. The best way to manage such situations is to stay calm and verify information before acting. Never ever share OTPs, ATM pins, passwords, CVV, Aadhaar details, or even bank account information with anyone over phone calls or messages. Genuine banks and government agencies never ever ask for confidential details in this manner. If any financial message creates urgency or fear to you, it is wise to confirm directly through official websites, bank branches, or trusted customer care numbers only. Another growing issue is lifestyle pressure created through social media and comparison culture. Many people spend beyond their income trying to maintain appearances through expensive gadgets, branded products, vacations, or unnecessary online shopping. Managing finances wisely means understanding the difference between needs and temporary desires. Simple habits can help greatly, like avoid impulsive purchases, compare prices before buying, use credit cards carefully, pay bills on time, maintain savings regularly, and most importantly, live within your means. Financial literacy is a term that sounds complicated, but in reality, it is one of the most simplest and most essential life skills every citizen should have. Because whether we are students, farmers, salaried employees, homemakers, small business owners, or retired citizens, money affects all

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के स्वर में गाए भजन। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। हैप्पी एंडिंग फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत रेखा भारद्वाज, प्रिया एंड्रयूज और जिगर की आवाजों में।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: शोर इन द सिटी फिल्म से ये अगला गीत आप सबकी ओर श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाज़ों में। सचिन जिगर का संगीत है, गीत लिखा है समीर अंजान ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं यंगिस्तान फिल्म से अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत सवारा है जीत गांगुली ने और शब्द रचना कौसर मुनीर की।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर।
1: अब हमारे श्रोता जहां हम भी वहां, आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे

0: साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एफआईआर की प्रक्रिया 20 जून से

0: शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,000 बात है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या

0: ढंग जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले

0: या बंगाल के सीमावर्ती जिले, उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से, कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी। तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात, किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी बिल्कुल,
0: विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है कि इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे।

0: फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। तो मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी। पंजाब पुलिस 2 4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़े कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिविजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी,
2: 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, will survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसकी समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
0: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, एक रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

पॉडकास्ट खामोश और सुरीली बेला में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त दिव्या नेगी। श्रोताओं, सफर में हम सुनवाएंगे आपको आपके पसंदीदा फिल्मी गीत। आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7088000731 पर। तो लिख भेजिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत की बोल। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत दो रास्ते फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्विनी, माई, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान ने। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां हमें मैसेज कर रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और ये फरमाइश है फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद और नसीर मुलाणी की।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से। ये फरमाइश है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। पटेल नगर मालोट से हमें मैसेज कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू गुड्डू। भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। सब्जी मंडी झज्जर से ये फरमाइश हम तक पहुंची है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया की। साथ ही भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश है सोहन जोशी और पायल जोशी की। नागचुन रोड संचय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। शेरवानी स्कूल गंजवाड़ा से ये मैसेज है आफ्ताब अंसारी, लुबला अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर और आलिया अंसारी। मोहाली पंजाब से ये फरमाइश हम तक पहुंची है बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की। झारखंड से आप हैं सुबह साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, रेशमा, कुमारी दीपाली, कुमारी देवेन। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और शब्द रचना अनजान की।

कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है गंज डुंडवाड़ा से शमशुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान अनु खान उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी की। सप्तरंग श्रोता परिवार कुमार गली श्रीरामपुर से हमसे जुड़ा है। आप हैं अशोक दली, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका। पूनावली पुणे से आप हैं अजय, सोनवनी, करिश्मा, अविका और विशाखा। पटियाली रोड गंजवाड़ा से ये फरमाइश है। आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल अरहान और खैल बाजार पानीपत से ये फरमाइश है। नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से ये फरमाइश है। पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक की। खुकानी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं संजीव कुमार और अमन कुमार। बघेरा दुर्ग से ये मैसेज है। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव की। वीरमगांव गुजरात से ये फरमाइश है। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी भावसार। और गांव लोगढ़ ठाकुरावाला से आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत। फिल्म आन मिलो सजना से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

बीजना मुरादाबाद से ये मैसेज शामिल कर रहे हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का। श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रीतेश संगई और इनका पूरा परिवार। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। राजनगर कांति निकेतन से ये फरमाइश हम तक पहुंची है कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता और कोमल गुप्ता की। ऐशबाग लखनऊ से हमें मैसेज कर रहे हैं रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, शारदा गुप्ता, कुसुम और रूपा इलाहाबादी की। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी हमें मैसेज कर रहे हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। जसपुर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से ये फरमाइश हम तक पहुंची है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन की। गांव हरिडू चांडिल झारखंड से आप हैं तुलसीदास, कल्पना, मनोरमा, मनमोहिनी, दीनबंधु। राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से ये फरमाइश है दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और पूरा परिवार। जलगांव जंक्शन से ये फरमाइश हम तक पहुंची है दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। भटिंडा रोड मंडी डब्बाली से आप है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। और अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं तेलंगाना से और आप हैं राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानु राज और अमित खन्ना। दीप रेडियो लिस्टर क्लब लेहगांव रेलवे महाराष्ट्र से ये मैसेज हम तक पहुंचा है कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े की। और अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं शास्त्री नगर बीड शहर से आप हैं किशन सपकाल, सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल और आशा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फूल और कांटे फिल्म से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। कोको कोहली ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन जीवान और आर के राजागी। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये मैसेज हम तक पहुँचा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय का। अस्तुपुरा जिला मऊ से आप हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से ये फरमाइश है आज़ाद अली अनवर और रिजवाना परवीन की। शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से ये फरमाइश है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल की। सदर बाजार कुरावली से आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से ये फरमाइश है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक की। संभलपुर कांकेर से हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। वडिंगखेड़ा से आप हैं पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत अनाड़ी फिल्म से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा की। अनारगली बाजार जगराओं से यह मैसेज है। कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और सभी साथियों की। जिला अमरोहा, नई बस्ती, पतेई खालसा से ये फरमाइश है। आप हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सिफान, बिटिया आलिशा और नाविया।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियां से। आप हैं परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, तपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, यूपी से। यह मैसेज हम तक पहुंचा है मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। चक 5 MG पत्रोड़ा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। आप हैं मंगल जनागल, राहे श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, गांव जाखोद, राजस्थान से। ये फरमाइश हम तक पहुंची है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष हमें मैसेज कर रहे हैं टीकमगढ़ MP से। और अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। आप हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहा, मोहम्मद आलम हाशमी, कस्बा गुन्नौर, यूपी से। ये फरमाइश हम तक पहुंची है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा की। गांव नाथना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। सिकंदरा राउत से ये फरमाइश मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन की। गांव फरासी हिसार से आप हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। जिला मुरादाबाद, उलापुर, यूपी से अगला मैसेज है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से ये फरमाइश है प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि और कृष्णा गोड़के की। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल हमें मैसेज कर रहे हैं। सदर बाजार, मारवाड़ा, बिलाड़ा, राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। खालापार मुजफ्फरनगर से ये फरमाइश है साहिना, प्रवीण, फातिमा, खुशबू, आयजा और मोहम्मद अदीब की। स्योहारा बिजनौर यूपी से आप हैं आसिफ अली चौधरी, बेगम रिहाना, अराफत अदीब और कादिर चौधरी। साथ ही अगला मैसेज कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पलाड़ी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की। गांव झगुड़ी, जिला यमुनानगर से आप हैं रणधीर बांगर, गुरमैचो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन।

फरमाइश हम तक पहुंची है करूला मुरादाबाद से, आप हैं अयूब खान इरम गुड़िया और सोयब खान सिंधौली बरेली से। ये फरमाइश जिशान वासी की हम तक पहुंची है और अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं आप हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण अनुराधा दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अगला मैसेज हम तक पहुंचा है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी का। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत बेटा फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति

0: दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।